मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। चिंतन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और जैसे वो रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं और वो रोता रहता है। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

जैसे तेज हवा बादलों को उड़ा देती है, वैसे ही भगवान पर भरोसा मन के सारे बोझ को हल्का कर देता है।

भगवान कभी जोर से नहीं चिल्लाते, वो तो बस अंतरात्मा में एक शांत हल्की सी दस्तक देते हैं।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पाल हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहीं हैं स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: अभी आप सुन रही थी रंजना जोगलेकर की गायन स्वर में सतीश भाटिया द्वारा संगीतबद्ध श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे हरी खाद के लिए डेंचे की बजाई इसके बारे में। किसान भाइयों, बार बार जिक्र आवे है कि भाई खेत की सेहत सुधारण खातिर हरी खाद का महत्व बहुत बड़ा है। कई बार इसके जानकार डॉक्टर हूँ तो बातचीत भी करवाऊँ हाँ, हम भी चौपाल में बैठे हैं बातचीत करते रहा हाँ, आपस में भी खेत में कितने बैठा हाँ, तो कई डाल की बात चल रहे हैं कि भाई हरी खाद बना लो, उससे खेत साफ सुथरा हो जाएगा, ज़मीन में ताकत बन जाएगी। हरी खाद की खातिर भाई मूँग भी कुछ भाई बोले हैं, पहले सन भी बोया करते, लेकिन ई बाल में यूँ देखा तो डेंचा का ज़्यादा काम भाई कर रहे हैं। वो बुआई कर ले हैं, उसके बाद फिर उसने खेत में काट दे हैं। डेढ़ एक महीने का यू हिसाब सा बना है, इतना अगर धान लागेंगे अगली फसल का जो टाइम आओगा उस टाइम पर यो पक के तैयार भी हो जाएगा। पकड़ का मतलब इन्हें समझ लो कि हरी खाद की खातिर तैयार हो जाएगा। इसमें जो पहले खुराक देनी है गोबर की खाद देनी है वह भी गिर सका हाँ, नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा इसमें देनी है। 20-25 किलो बीज ले लें किलो खातर, और पड़ेवा करके जब सही बत्तर धरती आ ले तो उस टाइम पर छीटा दे के हमने ही बोना है। टाइम का जिक्र करें तो अप्रैल और मई का महीना माना गया है गेहूँ की कटाई का तुरंत बाद। बीज लिया हुए साफ सुथरा बीज हमने मिल जाया, खेत में पड़ेवा हो जा, बखेर के और कल्टीवेटर काट दें खेत में, सुहागा पाटा गेल मार दें उसमें ताकि दब जाए ऊपर दें और जमाव ठीक डालते ले लें। बीज का उपचार कर लें तो बहुत बढ़िया बात है, राइजोबियम कल्चर के टिकट हैं। और फिर बात आओ है सिंचाई की। देखो वैसे तो मेरे ख्याल जरूर तो नहीं पड़िया करती, कई बार काम चल जाया करे, थोड़ी बहुत बारिश हो जा, लेकिन जब बारिश नहीं हुई ना तो एक दो सिंचाई भी हमने करनी पड़ेगी, और वो कर दें जरूरी भी है। जब ठीक डाल जमाव नहीं लिया, बढ़वार ठीक ठाक नहीं ली, जिस मकसद खातर हमने वो बो रखा है वो नहीं बन पाया, तो फिर उसका फायदा क्या होगा। डेंचे ने ज़्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं पड़िया करती, 10-15 किलो खाद शुरुआत में दे दें हम, जो भी है थोड़ा सा फास्फोरस, अच्छी वृद्धि हो जाएगी उससे। और डेढ़ एक महीने के बाद जब उसमें फूल आ जाए, जब पौधा 4-5 फुट का हो जाए, तो रोटावेटर खेत में चला कर उसने ज़मीन में मिला दें, और फिर उसमें पानी भर दें खेत में, खेत में पूरा डाल पानी भर दें। पानी भरे पास क्या होगा कि वो जो इतने पत्ते हैं वो जो डंठल हैं वो रोटावेटर ने काटे हुए मिट्टी में मिला दिए, तो उसमें पानी आओगा तो वो गल जाएंगे। अगर हमने पानी नहीं दिया तो वो ऊपर जितने डंठल रह जाएंगे वो सारे सूख जाएंगे, और सूखे हुए डंठल अगली फसल जब होंगे तो उसमें दिक्कत खड़ी करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो ज़मीन की सेहत सुधर जाएगी, कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएंगे ज़मीन में, नाइट्रोजन की बचत रहेगी, आगे खाद बहुत कम देने पड़ेंगे, और जो मारदुर नूणी की धरती है ना, लवणीय क्षारीय जो मारदुर जमीन है उनमें भी सुधार आ जाएगा। किसान भाइयों, या इसी फसल है हमारे बड़े बड़े के कहा कर देख, चलो और कुछ नहीं होगा ना तो ढांचा बो दें, कुछ क्षेत्र में इसने जंतर भी कहे हैं, अगर भाई जंतर बो दें यो जाम जाएगा, इसका पत्ता पड़ जाएगा, लकड़ी बन जाएगी, कुछ इसकी जड़ा में नाइट्रोजन बनेगी, अगली फसल बोएंगे तो वो ठीक डाल हो जाएगी, पहले भी बोया कर दें। और ईब कुछ भाई तो ज्वार के साथ मिला के बोते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चारा में भी कामयाब हो जाए है यू, ज़्यादा तो चारा में कामयाब नहीं होता, पशु का दस्त लगा दे है और थोड़ा सा तासीर इसकी गर्म सी बने है, यो पशु ती घना सा हम खुआंदे भी नहीं, और कहने की बात यह है कि पशु घना सा खुश होकर इसने खांदा भी नहीं। थोड़ी बहुत कितने फली हैं तो वो दाना चला जा पशु के पेट में, वो तो फायदेमंद उसके है, लेकिन इसकी पत्तियाँ ना थोड़ा मन सा मार के खाया करें, तो हम न्यू मान लें कि पत्ती तो खेत में हरी खाद बनाने खातर काम आओगी, हरी खाद बन जा, ज़मीन में मिल जा, पानी उसमें दे दे, फिर वो गल जा, तो अगली जब हम फसल बोएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हमारा फसल लगेगी। और इसमें किसान भाइयों कोई खर्चा भी नहीं होता, कि खर्चा है बीज लेकर आना है, और बीज भी कई बार तो सरकारें दे दे है, बीज फ्री भी दे दे है, थोड़े बहुत 10 रुपये बीज का

0: लाग बीजा तो कोई बड़ी बात नहीं है, खेत की सेहत सुधरन लाग रही। इब गोबर की तो इतनी खाद मर तो रहे नहीं कि वो खेत में गेर लें। हरी खाद का अपना एक अलग तो महत्व है, वो जो हम बनावा हाँ और फिर हम फसल बोआ हाँ तो न्यारा रंग आओगा। सिंचाई की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, पड़े तो एक दो सिंचाई देनी पड़ जाए तो उसकी भी हमने कोशिश करनी है। तो ये कुछ बात थी हरी खाद बनाने में। तो डेंचे तो जिन भाइयों ने हरी खाद बनानी ही, ये तरीका अपनावे और हरी खाद बना कर अपने जमीन की सेहत ने सुधारे।
1: ये थी कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः की 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो, डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में

शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवा संसार, प्रसारण समय शाम 5:30। इस कार्यक्रम में विशेषांक रहेगा युवा पसंद।

घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। बालकुंज कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:30। प्रातः 7:35 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह सवेरे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम शाम 7:00, कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:20 और खेत खलिहान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:25 पर और प्रातः 7:15 पर। एक फिल्म से कार्यक्रम रहेगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। आपके अनुरोध पर फोन पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर और एक कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:00। लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं एकता भटनागर।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोतों, आज के डिजिटल युग में बिना इंटरनेट और मोबाइल के जीवन अधूरा सा लगता है। दुनिया के किसी भी कोने से पल भर में जुड़ने की इस आधुनिक सुविधा को हम दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तकनीकी क्रांति सूचनाओं के आदान प्रदान और वैश्विक जुड़ाव के महत्व को समझाने के लिए हर साल 17 मई यानी आज ही के दिन को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण ऐतिहासिक है। 17 मई 1865 को पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसकी स्थापना भी हुई थी। और फिर साल 1969 में इसे विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बाद में आगे चलकर 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सूचना समाज दिवस को भी जोड़ दिया और तब से इसे संयुक्त रूप से मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में। मुख्य उद्देश्य की बात करें आज के इस दिवस की तो डिजिटल दूरी मिटाना, जिसमें दुनिया की उन हिस्सों तक इंटरनेट और तकनीक पहुंचाना है जो आज भी इससे दूर है। जागरूकता बढ़ाना, जिसके अंतर्गत इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है और विकास को गति देना, ये हम कैसे भूल सकते हैं। यानी शिक्षा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, स्वास्थ्य यानी टेलीमेडिसिन हो, बैंकिंग सेवाओं का सुलभ बनाना इस दिन का मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ तकनीक ने जो ये टेलीकम्युनिकेशन की तकनीक है, इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी एक परिवार बना दिया है, वहीं इसके सामने साइबर अपराध, डेटा चोरी और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें जैसी बड़ी चुनौतियां वो भी खड़ी है। तो ऐसे में हमें और भी ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। श्रोताओं, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हमें याद दिलाता है कि तकनीक मानव कल्याण का एक मजबूत जरिया है। इसका सही और सुरक्षित उपयोग करके ही हम एक सशक्त, जागरूक और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर।

0: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhotshala Temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
7: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट आरएनडी को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
6: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
7: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
6: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement, FTA, took effect in January 2026. The visit follows a high-growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion US dollars in 2025 and Swedish FDI into India.

0: सभी साथी मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
0: जय हिंद साथियों, आज मैं पंखुरी
2: और मैं सलोनी
0: आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथियों, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहले इसे केवल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कहा जाता था। वर्ष 2006 में इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द जोड़कर इसका नाम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे रखा गया। ये आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है।
2: साथियों, मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स द्वारा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। संग्रहालय ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ऐतिहासिक वस्तुएँ, कलाकृतियाँ और वैज्ञानिक खोजें सुरक्षित रखी जाती हैं। नई पीढ़ी को अपने इतिहास और सभ्यता से परिचित कराते हैं तथा शिक्षण और शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: सलोनी, क्या आप जानती हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे हर वर्ष 19 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य खेलों और दैनिक जीवन में ईमानदारी, सम्मान, समानता और खेल भावना को बढ़ावा देना है। फेयर प्ले का अर्थ है नियमों का पालन करके निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार करना। यह दिवस लोगों को सिखाता है कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण सही तरीके से खेलना और दूसरों का सम्मान करना है। खेलों में फेयर प्ले से अनुशासन, टीम भावना और नैतिक मूल्यों का विस्तार होता है। यह दिवस खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और समाज की ईमानदारी तथा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता है।
2: साथियों, अब सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम जिसका शीर्षक है ख से खो खो की कहानी।
3: बिल्कुल नहीं सुनवाएंगे सलोनी, पहले सुनवाएंगे हम बच्चों को गीत, उसके बाद CIT का कार्यक्रम।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा पंखुरी।
2: पंखुरी अब कर लेते हैं अपने साथियों से बातचीत। तो पहला साथी अपना नाम बताए।
3: आराध्य।
2: आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
3: मैं आपके लिए गर्मियों में जानकारी लाई हूँ।
2: बताइए
3: साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गर्मी को सहन करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप गर्मी से निजात पाना चाहते हैं तो पौधे लगाना शुरू करें जो कुछ सालों बाद पेड़ का रूप ले लेंगे। और हर एक पेड़ ज़रूरी होता है। कुछ फ़ायदे बताते हैं आपको पेड़ों के। एक बड़ा पेड़ साल भर में 20 किलो धूप सोखता है। एक बड़े पेड़ के नीचे गर्मियों में तापमान 4 डिग्री कम हो जाता है। एक पेड़ हर दिन 230 लीटर ऑक्सीजन निकालता है। एक पेड़ हर साल 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। देखा साथियों, एक पेड़ लगाने से कितना फ़ायदा होता है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे वो हमारे ही काम आएंगे।
0: आराध्या, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और सलोनी, अब हम अपने दूसरे साथी से बात कर लेते हैं।
2: बिल्कुल, तो अपना नाम बताइए।
4: सुहानी।
2: आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
4: कविता।
2: सुनाइए।
4: पतरा बरसो छम, बजरा बरसो छम छम छम, सूखी धरती को कर दो नम, सूरज चाचू में गुस्सा ज्यादा, आकर की थोड़ा कर दो कम, शान शौकत से तुम आना, काली घटाएं संग मिलाना, इतनी ज्यादा बारिश करना, निकल जाए गर्मी का दम, गरज चमक दिखा कर आना, आकर के पूरे जग में छाना, जब तक भरे ताल तलैया, खूब बरसना तुम हर दम, बच्चे सभी बारिश में खेले, गली गली बच्चों के मेले, खूब नहाए सब मस्ती में और नाचे सब थम थम। धन्यवाद।
0: सलोनी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। साथियों, आप सुन लेते हैं CIET द्वारा तैयार किया गया ये कार्यक्रम जिसका शीर्षक है ख से खो खो की कहानी।
5: ये कहानी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जो बच्ची अभी आपकी साथी थी पंखुरी स्टूडियो में, उसका नाम था सुहानी। ठीक है, और अब सुनते हैं CIET का ये कार्यक्रम।
6: दोस्तों नमस्ते, तुम्हारा स्वागत है। जानते हो ना हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं?

0: दोस्तों आज बारी है एक कहानी की।
1: वाह कहानी।
0: अरे राजू, पिंकी, तृप्ता सब आ जाओ, भैया हमें कहानी सुनाएंगे। आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। आज का अक्षर ख।
2: तो दोस्तों आज हम सुनेंगे खौ खौ की कहानी। किसकी कहानी?
3: खो खो।
0: खो खो कौन है?
2: खो खो कौन है? भाई खो खो एक बंदर था, यानी उसका नाम था खो खो। क्या नाम था?
3: खो खो।
2: तो खा से खो खो। खो खो था बड़ा शैतान, जंगल के सब जानवरों को बहुत तंग करता था। उसी जंगल में था एक प्यारा सा नन्ना सा खरगोश। कौन था?
3: खरगोश।
2: हाँ, खा से खरगोश। तो खरगोश दिन भर खेलता रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया खिल्लू खरगोश। खा से खिल्लू खरगोश। एक दिन खोखो ने सोचा, क्यों ना आज खिल्लू खरगोश को तंग किया जाए। तो वो चुपके चुपके खिल्लू के घर गया और खिड़की से झांका। किससे झांका?
3: खिड़की से।
2: शाबाश, खा से खिड़की। तो खोखो ने देखा एक थाली में खीरा और खरबूजा रखा है। थाली में क्या क्या चीजें रखी थी?
3: खीरा और
0: खरबूज।
2: खरबूजा। शाबाश, खा से खीरा और खा से खरबूजा। तो खिल्लू खाना खाने के लिए हाथ धोने गया, तो खोखो ने इसी बीच खीरा और खरबूजा खा लिया। समझ में आया? तो खिल्लू हाथ धोकर आया तो देखा खीरा और खरबूजा गायब। खोखो खिल्लू को चढ़ाने लगा। चढ़ाने लगा, कहने लगा, खिल्लू का खीरा मैंने खाया, खिल्लू का खीरा मैंने खाया, खिल्लू का खरबूजा मैंने खाया, खिल्लू का खरबूजा मैंने खाया। खिल्लू को बहुत बुरा लगा। अब तो खोखो रोज खिल्लू का खाना खाने लग गया। खिल्लू बेचारा रोज भूखा ही रह जाता, समझे? तो बच्चों जानते हो कि एक दिन क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
2: एक दिन खोखो फिर खिल्लू को तंग करने पहुंचा। अब की बार खिल्लू ने खीर परोसी थी। क्या परोसी थी?
3: खीर।
2: खा से खीर।
0: खीर।
2: खीर ठंडी थी। ठंडी खीर को देख खोखो के मुंह में पानी आ गया। उसने बड़ा सा मुंह खोला और ढेर सारी खीर मुंह में भर ली। पर ये क्या, खीर तो एकदम खट्टी थी। क्या थी?
3: खट्टी।
2: बिल्कुल सही, खा से खट्टी।
0: खट्टी।
2: खोखो थू थू करने लगा। खिल्लू ने खोखो को आते हुए देख लिया था, तो उसने चुपके से खीर में ढेर सारा नींबू का रस डाल दिया। समझ गए? तो खट्टी खीर से खोखो के दांत तक खट्टे हो गए थे। क्या हो गए थे?
3: खट्टे।
2: हाँ, खा से खट्टे। हाँ, खा से खट्टी खीर। बहुत बहुत खट्टी खीर। तो खोखो के दांत खट्टे हो गए और वो खट्टे दांत से परेशान हो गया। क्या हो गया?
3: परेशान।
2: कौन हो गया परेशान?
3: खोखो।
2: हाँ, परेशान हो गया। शाबाश, बिल्कुल सही। तो खोखो ने खाई खट्टी खीर और खट्टी खीर से हो गए उसके दांत खट्टे और दांत
0: खट्टे हो गए।
2: हाँ,
0: परेशान हो गया।
2: हाँ। बहुत बढ़िया भाई, गुड़िया को सारी बात समझ में आ गई है ना, और तुम्हें भी आएगी नहीं?
3: आएगी।
2: हाँ तो बच्चों, खोखों को अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है। उसने वादा किया कि अब वो किसी को भी तंग नहीं करेगा,
0: किसी को।
2: हाँ, और अब वो अच्छा खोखा बन गया था। और इस तरह से खिल्लू खरगोश और खोखो बंदर अच्छे दोस्त बन गए थे। आया मजा कहानी का? तो बजाओ ताली।

जंगल में था एक बंदर, नाम था उसका खो खो। खेल खेल में करता था तंग सभी को खो खो खो खो खो खो।

बोले खो खो खो खो खो खो, मैं ना छोड़ूंगा खिल्लू को, लगा सोचने खो खो। खिल्लू की खिड़की से अंदर जा पहुंचा अब खो खो खो खो खो खो।

Aí! खेल खेल में मजा चखाया, खेल खेल में मजा चखाया, अब खो खो को समझ में आया, अब खो खो को समझ में आया, दूर हुई खो खो की शैतानी।

0: 여기 나의 가니?
1: कार्यक्रम कैसा लगा साथियों?
2: बहुत अच्छा पंखुरी।
1: और सलोनी, ख से कितने सारे शब्द होते हैं और इन पे तो हमने कार्यक्रम भी सुना।
2: बिल्कुल पंखुरी। दिशा, जब हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
3: आज मैं आपको एक पोइम सुनाऊंगी।
2: सुनाइए।
3: स्कूल का बस्ता भारी जान, उसमें छिपाता पूरा जहान। स्कूल का बस्ता भारी जान, उसमें छिपाता पूरा जहान। लंच ब्रेक था जैसे त्योहार, सबके टिफिन पर सबका अधिकार। होमवर्क भूल गए तो बहाने सैकड़ों, कॉपी घर भूल गई सबसे अच्छा झूठ वो। बैल बजे तो जान में जान आई, जैसे जेल से छुट्टी पाई। अब सोचे वो दिन कितने अच्छे थे, जो आज भी यादों में बसे थे। धन्यवाद।
1: अब हमारा अगला साथी अपना नाम बताए।
4: आयुष।
1: आयुष, आप हमारे लिए क्या लाए हैं?
4: एक कविता।
1: सुनाइए।
4: पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। धन्यवाद।
2: साथियों, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। मधुमक्खियाँ फलों, सब्जियों और फूलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे कृषि और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनके बिना खाद्य उत्पादन और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें मधुमक्खियों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए।
1: साथियों, विश्व आतंकवाद विरोध दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में शांति, एकता और मानवता का संदेश फैलाना है। भारत में यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को आतंकवादी हमले में उनकी मृत्यु हो गई थी। आतंकवादी गतिविधियां न केवल निर्दोष लोगों की जान लेती हैं, बल्कि देश की शांति, सुरक्षा और विकास को भी प्रभावित करती हैं। सलोनी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। जैव विविधता हमें भोजन, औषधियाँ और अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती हैं। साथियों, अब सुन लेते हैं एक और गीत।

0: गीत कैसा लगा साथियों?
1: बहुत अच्छा पंखुरी।
2: एक गीत हमने आपको सुनवाया और इसमें इस गीत में माता पिता के बारे में जिक्र था, बच्चों का माता पिता के प्रति स्नेह का जिक्र था। तो एक बात हमें ध्यान आई कि आपको ये बताएं कि हम अपने बड़ों की बातें मानने की आदत डालें। कई बार दिक्कत हो जाती है आपको, माता पिता या घर के जो बड़े होते हैं वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही हमें कहा जा रहा है और ये हमारी आज़ादी में विघ्न डाला जा रहा है, ऐसा कुछ रहता है फीलिंग। लेकिन आप ये सोचिए कि उनका जीवन का एक लंबा अनुभव होता है, वो आपके माता पिता या घर के जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आप उनकी बताई हुई बातों को समझने की कोशिश किया करें और अपनी जीवन शैली में उसको अपनाने की कोशिश करें। और जाते जाते आपको ये और बताएंगे बच्चों कि गर्मी बढ़ तो रही है लेकिन मौसम में असंतुलन है, कभी तो बारिश हो जाती है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं आजकल, और कभी गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी का हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मौसम में ख्याल रखें कि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनका सेवन आप ज़्यादा ना करें, आपका गला खराब हो सकता है, जुकाम हो सकता है। जो सम तापमान वाला पानी है या पदार्थ हैं उनका ही आप सेवन करें, वो आपके सेहत के लिए ठीक है। और ढीले कपड़े आप पहनें, गर्मी से अपना बचाव करना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय प्रचंड गर्मी होती है सूर्य देव

0: देवता अपनी पूरी शक्ति के साथ विराजमान होते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है और जब ठंडी हवाएं चलती हैं आनंद लीजिए उसका, मौसम के इस उतार चढ़ाव का भी, लेकिन अपना ध्यान आपको मौसम की जो गंभीरता है उससे रखना ही रखना है। इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटते हैं, सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बालकुंज, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारी आज की कलाकार हैं ऐश्वर्या राय। जी हाँ, फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फिल्मों से लिए गए चुनिंदा गीत आज हम इस कार्यक्रम में सुनेंगे। तो पहला गीत सुनते हैं, और प्यार हो गया, इस फिल्म से।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 1 नवंबर वर्ष 1973 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ था। 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश भारत का नाम रोशन करने वाली ऐश्वर्या अपनी बेहतरीन अदाकारी और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं।

ऐश्वर्या राय के पिताजी कृष्णराज राय एक मरीन इंजीनियर थे और उनकी माँ वृंदा राय एक लेखिका। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई, लेकिन बाद में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन्होंने मुंबई के डीजी रुपारेल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वे बचपन में आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका रुझान मॉडलिंग की ओर हो गया।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कार्यक्रम जारी है एक कलाकार, और हमारी आज की कलाकार हैं फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं एक कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारी आज की कलाकार हैं फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और वो वहाँ रनर अप यानी दूसरे स्थान पर रहीं। उसी वर्ष उन्होंने मिस वर्ल्ड का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार, और हमारी आज की कलाकार है ऐश्वर्या राय। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। उनकी पहली फिल्म मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म इरुवर थी। इसी साल उन्होंने फिल्म और प्यार हो गया, इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। और फिर तो हम दिल दे चुके सनम, मोहब्बतें, देवदास, धूम टू, गुरु, योद्धा अकबर, इन्होंने कुछ शानदार फिल्में की। ऐश्वर्या राय अपनी मातृभाषा तुलु के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और मराठी भाषाओं में भी पारंगत हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम अभी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति PP चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, PM Modi said that India and Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners. Prime Minister Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. Within days of levying high customs duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The government on Wednesday had hiked import duty on precious metals from 6% to 15%. The goods under restricted category needs government license for imports. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. The United States and Nigerian forces carried out a joint military operation on Friday night that killed senior Islamic State commander Abu Bilal al-Minuki and other ISIS leaders in Nigeria's Lake Chad Basin. Nigerian President Bola Ahmed Tinubu confirmed the elimination of the wanted ISIS senior leader Abu Bilal al-Minuki, who was also known as Abu Minok, along with several of his lieutenants. U.S. Secretary of War Pete Hegseth said that the elimination of top ISIS leaders in Nigeria will help protect Christians in the country. Congo has warned that the newly declared Ebola outbreak in its eastern province of Ituri involves the Bundibugyo strain, which has a high fatality rate and carries a significant risk of further spread. Addressing a press briefing in the capital city of Kinshasa, Congo's health minister Roger Kamba said that the Bundibugyo strain has no vaccine and no specific treatment. According to their health ministry, 246 suspected cases and 80 deaths have been reported so far during this outbreak, including 4 deaths among confirmed positive cases. Bulgaria has won Eurovision Song Contest 2026 as Bangaranga by Dara triumphed with highest number of votes at the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria. This was Bulgaria's first ever victory as it returned to the Eurovision for Vienna 2026 after taking 4 years off from competing. Bulgaria won the contest with a points tally of 516. And that is the end of this news bulletin.
4: मीटर वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:10 और 10 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। मीडियम वेव 262.47 मीटर पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे 12:30 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: कार्यक्रम घरांगन सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। प्रीति जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार और रीना आपको भी मेरा नमस्कार।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रीति जी, हमारी बहनें आज रेडियो के जरिए हमसे जुड़ी हुई हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: और रेडियो के जरिए ही हम लोग देश भर की जानकारी, विदेश भर की जानकारी हम घर बैठे आसानी से पा लेते हैं। हमें दुनिया भर के बारे में पता लगता रहता है। ये एक दूर संचार का ही जरिया है।
1: जी बिल्कुल।
0: और ये जिक्र हम क्यों कर रहे हैं प्रीति जी, आप तो जानती ही हैं। हम अपनी बहनों को बता दें कि हर वर्ष आज ही के दिन 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाना कि डिजिटल सुविधाएँ और सूचनाओं को समाज तक, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक किस तरह पहुंचाना और कितना महत्वपूर्ण है वो आम जनता के लिए। और वर्तमान युग को डिजिटल युग भी कहा गया है।
1: बिल्कुल, जैसा रीना आपने बताया कि इंटरनेट भी एक दूर संचार का माध्यम है और उसके माध्यम से हम घर बैठे किसी भी बीमारी की जानकारी ले सकते हैं। एक ऐसी ही बीमारी है रक्तचाप, और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य रक्तचाप के बारे में लोगों को जानकारी देना है ताकि वो समय से अपना इलाज करा सकें। इसलिए नमक का कम सेवन करना चाहिए, जिनको उच्च रक्तचाप की शिकायत हो अपने आहार में ताजे फल लेने चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। और रीना, हम एक बात करें तो एक और दिवस मनाया जाता है 18 मई 2026 को, विश्व संग्रहालय दिवस। और 18 मई 2026 को विश्व संग्रहालय दिवस मनाने का उद्देश्य रखा गया है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम इस बार मनाएंगे और यह विषय सामाजिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद

0: समझ, समावेश और शांति को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को उजागर करता है।
1: बिल्कुल, और संग्रहालय किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखना है।
0: जी बिल्कुल,
1: और जिस प्रकार की ये संग्रह कितना आवश्यक है, उसी प्रकार ये हमारे जीवन को आनंदित करता है, और उसी प्रकार खेल कूद प्रतियोगिता भी हमारे जीवन को उतना ही आनंद पूर्वक आगे सुचारू रूप से चलाती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: और हमने देखा कई बार क्या होता है, खेलकूद के समय पे हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम किस प्रकार खेल रहे हैं। लेकिन विश्व फेयर प्ले डे यही सीख देता है, इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है हर वर्ष 19 मई को, कि कोई भी खेल या प्रतियोगिता आप खेलते हैं तो उनको सही नियमों के साथ और सही तरीके से खेला जाए।
0: रीना, बिल्कुल, जैसे खेल भावना से अगर हम किसी खेल को खेलते हैं तो वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है खेल खेलने की जगह का। उसी प्रकार एक ऐसी चीज है जिसे हम खाते हैं तो मन आनंदित हो उठता है, और वो है शहद। शहद बहनों में मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, और मधुमक्खियों के उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व को समझना और कृषि में उनके योगदान को पहचानना है। यह दिवस मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। मधुमक्खियां हमें मीठा मीठा शहद देती है जिससे हमारी जिंदगी मिठास से भर जाती है। और बहनों, अब हमारे कार्यक्रम में इसी मिठास को बनाए रखने के लिए हम चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक

0: अभी आपने सुना मधुर गीत जिसमें नारी की खूबसूरती की बहुत खूबसूरती से व्याख्या की गई है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बहनों को सुनवाते हैं इसी से संबंधित वार्ता जिसका विषय रहेगा नारीवाद के मायने, और वार्ताकार हैं सुश्री लक्षिता जी।
1: नारीवाद एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इसे सही ढंग से समझना और इसके उद्देश्य को पहचानना बहुत आवश्यक है। आइए नारीवाद के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। नारीवाद की परिभाषा पर बात करते हैं। नारीवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह कई आंदोलनों का समूह है जो महिलाओं की मुक्ति और बराबरी के लिए संघर्ष करते हैं। इसका मकसद सिर्फ पुरुषों के बराबर अधिकार पाना नहीं है, बल्कि समाज की उन संरचनाओं को बदलना है जो असमानताओं को बढ़ावा देती है। इतिहास और विकास की चर्चा करते हैं। नारीवाद का इतिहास लंबे समय से महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और असमानताओं के खिलाफ का संघर्ष का रहा है। शुरू में महिलाओं की समस्याओं को प्राकृतिक अंतर के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में इसे समाज की बनावट का परिणाम माना गया। इस संघर्ष ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और समाज में एक नई दिशा दी। नारीवाद के विभिन्न रूप हैं, जैसे उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद आदि। हर धारा को अपना नजरिया और तरीका अलग होता है, लेकिन सबका लक्ष्य महिलाओं की आज़ादी और बराबरी है। यह विविधता नारीवाद को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित करता है। समकालीन भारतीय समाज में नारीवाद पर विचार करते हैं। आज भी नारीवाद की अहमियत बनी हुई है, खासकर भारतीय समाज में जहाँ पितृसत्ता अभी भी प्रबल है। महिलाओं के अधिकारों और बराबरी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यह नारीवाद आंदोलन ने महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का साहस दिया और समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है। चुनौतियों और आलोचनाओं की बात करते हैं। नारीवाद को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित कर दिया जाता है। नारीवाद को किसी एक विशेष श्रेणी में बांधने का प्रयास होता रहा है, जिससे इसके व्यापक उद्देश्य को कमतर आंका जाता है। हमें समझना होगा कि नारीवाद का उद्देश्य सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ लड़ाई है। समाज पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। नारीवाद ने शिक्षा, कानून और समाज की संरचनाओं पर महत्वपूर्ण असर डाला है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए नारीवाद आंदोलन जरूरी है। इसके बिना समाज में वास्तविक बराबरी संभव नहीं। नारीवाद ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दिया है। भविष्य की दिशा की बात करते हैं। नारीवाद का भविष्य सबको साथ लेकर चलने वाला और विविधतापूर्ण है, जहां हर प्रकार की असमानताओं के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नारीवाद को अच्छी तरह समझना और अपनाना जरूरी है। नारीवाद हमें एक ऐसा समाज बनाने की प्रेरणा देता है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। इनके अलावा हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नारीवाद और शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से हम समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना नारीवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता नारीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं। यह उन्हें समाज में सम्मान और समानता दिलाने में मदद करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना नारीवाद का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार है, जहां उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता भी नारीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से समाज में संतुलन और न्यायपूर्ण नीतियों का निर्माण होता है। इससे महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा होती है। नारीवाद का लक्ष्य समाज और संस्कृति में बदलाव लाना है। कई संस्कृति परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। नारीवाद का प्रयास है कि इन रूढ़िवादी धारणाओं को बदला जाए और एक समानता आधारित संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल पर महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं को कार्यस्थल पर समान वेतन, प्रमोशन के समान अवसर और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न से मुक्त माहौल मिलना चाहिए। यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इससे कार्यस्थल पर विविधता और समावेशिता बढ़ती है। नारीवाद इस बात पर भी जोर देता है कि घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ना डाली जाए, पुरुषों को भी इसमें समान भागीदारी निभानी चाहिए। यह महिलाओं को करियर और व्यक्तिगत विकास के अवसर में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। मीडिया और विज्ञापन में महिलाओं की छवि को सकारात्मक और वास्तविक रूप में पेश करना भी नारीवाद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह आवश्यक है कि महिलाओं को केवल सुंदरता के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमानता, क्षमता और योगदान के आधार पर दिखाया जाए। नारीवाद यौनिकता के बारे में खुलकर बात करने का और यौनिक स्वतंत्रता की अधिकार की वकालत करता है। महिलाओं को अपने शरीर पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उन्हें अपनी यौनिकता को बिना किसी सामाजिक दबाव के अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। नारीवाद का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के लिए समानता नहीं बल्कि पुरुषों को भी उन पितृसत्ता दबाव से मुक्त करना है जो उन्हें हमेशा कठोर और भावनाहीन बनाने की अपेक्षा करते हैं। नारीवाद एक समावेशी आंदोलन है जो सभी के लिए समानता की वकालत करता है। नारीवाद का प्रभाव और महत्व केवल किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं, यह एक वैश्विक आंदोलन है जो सभी संस्कृतियों और समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष करता है। विभिन्न देशों में नारीवाद की ज़रूरतें और चुनौतियां विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन इसकी मूल भावना एक ही है, समानता और न्याय। नारीवाद ने कला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नारीवाद लेखकों और कलाकारों ने महिलाओं के अनुभवों और संघर्षों को अपने कार्य में उजागर किया है, जिससे समाज में जागरूकता और संवेदनशील बढ़ है। इनकी कृतियों ने समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारीवाद ने कई कानूनी सुधारों को प्रेरित किया है, जिनमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। ये कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विविधता और समावेशिता नारीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या यौनिकता से संबंधित हो। यह आंदोलन समावेशी है और सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करता है। नारीवाद की यह यात्रा सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। हमें इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हम एक बराबरी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकें। नारीवाद ऐसी दिशा दिखाता है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस दिशा में प्रयास करें और इस महत्वपूर्ण आंदोलन को आगे बढ़ाएं।
2: बहनों, अभी आपने सुनी एक महत्वपूर्ण वार्ता जिसका विषय था नारीवाद के मायने। जैसा कि बहनों, नारीवाद की भावना एक अच्छे समाज का निर्माण करती है और समाज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसी प्रकार अगर देश के युवाओं के अंदर अच्छे संस्कार हो और अच्छी भावना हो तो एक महान देश का निर्माण होता है, और युवाओं में देश प्रेम की भावना बनी रहे और उनके अंदर अच्छे संस्कार रहें, इसके लिए युवाओं को आतंकवाद और हिंसा जैसे रास्तों से दूर रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए भारत में हर साल 21 मई को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना, लोगों के बीच शांति, मानवता और एकता का संदेश फैलाना है। बहनों, यह दिवस 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी उसकी याद में, और आतंकवाद के खिलाफ देश के संकल्प को मजबूत करने के लिए चुना गया था।
0: बिल्कुल, और हमें आतंकवाद का विरोध करना भी चाहिए, और ताकि हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन प्रीति, कोई भी बातचीत करने के लिए या कोई भी चर्चा करने के लिए हम बैठते हैं जब साथ में, तो एक आम

0: चर्चा होती है कि सबसे पहला शब्द क्या आता है जहन में कि चलो चाय पे चर्चा करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो चाय पे चर्चा का विषय क्यों लाए हैं हम आज?
1: क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण दिवस मनाने जा रहे हैं।
0: जी, और ये दिवस रहेगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। कहते हैं ना, एक प्याली चाय सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें रिश्तों की मिठास और अपनों का एहसास भी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा
0: चाय
1: रीना
0: सिर्फ पेय नहीं है, हर दिन की छोटी सी खुशी का नाम है।
1: जी,
0: और इसी खुशी के लिए हम सभी विश्व चाय दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है कि चाय की संस्कृति जो और सामाजिक और आर्थिक महत्व को सम्मान देना। और देखा जाए तो पानी के बाद सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ भी चाय ही है।
1: और भारत में तो वैसे भी हर छोटे से काम के बाद एक चाय की चुस्की जरूर ली जाती है।
0: बिल्कुल, और जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, और यह दिन हमें चाय उत्पादन से जुड़े लोगों के प्रति सम्मान और जागरूकता का भी संदेश देता है।
1: और बहनों, एक और आपस में जोड़ने वाला महत्वपूर्ण विषय है जो हम मनाने जा रहे हैं 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। असल में जैव विविधता केवल जीव जंतुओं से संबंधित नहीं है, बल्कि समस्त मानवों से भी जुड़ी हुई है। यानी कि जैव विविधता केवल जंतुओं और जीवों से नहीं, मानवों के जीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उस विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पति से है जो संसार में या किसी जीवन के क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, और अगर ये जितने अच्छे से रहेंगे उतना ही अच्छा देश, समाज और विश्व का वातावरण होगा।
0: बिल्कुल, और इसी प्रकार हम सब मिलकर के प्रयास करें और आने वाले भविष्य को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं।
1: और प्रदूषित वातावरण, यहाँ तक कि पर्यावरण में बदलाव किसी भी ऐसी प्रजाति के जीवन के लिए खतरा पैदा कर देता है जो इसके अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाती, और ऐसे में कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। इसलिए हमें जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। और बहनों, फिल्म माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, और हम चंदन दास जी की आवाज़ में फिर से सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल।

0: बहनों, अभी आपने सुनी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल चंदन दास जी की आवाज़ में। अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। जितने सुंदर बोल उतनी सुंदर ये गज़ल। और बहनों, जब किसी सुंदर सी चीज़ को हम सुनते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में एक ऐसी चीज़ है जिसको खाने से बड़े और बच्चे सभी का मन आनंदित होता है, और वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम एक बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी मिठाई है, और बड़े और बच्चे सभी का जिसको खाने के लिए दिन रात ललचाता रहता है। और गर्मी के मौसम में तो इसको खाना ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कितनी ताजगी और ठंडक मिल गई है। और यह है बाज़ार में बहुत ही मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा मन करता है कि हम बाज़ार से कितना खाएं और कितना अपने अंदर ले, और वो कितना अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए है। ऐसे में कभी हम सोचते हैं कि क्यों ना इसे घर में ही बना लिया जाए। और घर में बनाने के लिए हम कई तरह की रेसिपी अपनाते हैं, और एक रेसिपी आज हमारे साथ लेकर आई है रीना जी, जो आपको एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बताएंगी।
1: तो बहनों, तैयार हो जाइए जल्दी से ये स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाने के लिए। सबसे पहले तो कॉपी पेन लेके लिखना शुरू कर दीजिए
0: जी।
1: सबसे पहले लेंगे दूध लगभग आधा लीटर, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं उसके मुताबिक। और आधा लीटर के अनुसार मखाने 2 कटोरी ले लीजिए। मिक्स बीज जो आ रहे हैं आजकल बाज़ार में तरह तरह के, वो आप 1 कटोरी भर के ले लीजिए। 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम, अखरोट थोड़े से ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, कुछ लोगों को अखरोट का टेस्ट कम पसंद आता है। और ऐसे ही 1 कटोरी खजूर बीज निकाल के ले लीजिए। और ये जितने भी मेवा है ना, इन सभी को दूध को हल्का गर्म करके उसमें भिगो के तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि मतलब वो अच्छे से फूल जाए।
0: जहाँ हाँ। हम बाजार के आइसक्रीम में केवल क्रीम खाते
1: बिल्कुल,
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल आपने हमें सारे ड्राई फ्रूट्स खिला दिए।
1: बिल्कुल, इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे तभी तो ये हेल्दी बन रही है। और देखिए, हम इसमें मीठा भी नहीं मिलाएंगे, मीठे की जगह हम इसमें मिलाएंगे शहद
0: जी।
1: कुछ मिठास तो खजूर से आ जाएगी, कुछ मिठास आएगी शहद से, जो कि हमें लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच डालना है। अगर फिर भी आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा शहद और ऐड कर सकते हैं इसमें। और साथ में ही इसकी सजावट के लिए, क्योंकि बिना सजावट के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, दिखावा ज़रूरी है, थोड़े से ताजे कटे हुए फल लीजिए, साथ में वो रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी चेरीज जो आती हैं वो ले लीजिए 1 कटोरी भर के। और अब लगभग आधा 1 घंटे के बाद

0: आप देखेंगे आपके जो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो फूल गए हैं अच्छे से, उसको आप या तो मिक्सी के जार में या ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल पिसा हुआ चाहिए तो आप मिक्सी में कर लीजिए, नहीं तो उसको ब्लेंडर से पीस लीजिए, और वो गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर आपके सामने तैयार हो जाएगा।
1: जी
0: अब इसमें मिलाइए शहद की मिठास, और सजावट के लिए उसको मैं फिर ये कहूँगी कि एक बार उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में डाल दीजिए पहले, और तकरीबन 2 घंटे बाद निकाल के एक बार फिर ब्लेंड कीजिए, ताकि वो टेक्सचर ना और प्लफी और क्रीमी बन जाएगा।
1: यानी कि हमें 2 घंटे के लिए उसको प्रिजर्व रखना है
0: बिल्कुल,
1: पहले, फिर वो आइसक्रीम की शेप में डालना।
0: बिल्कुल उसको फिर से ब्लेंड कीजिए और प्लफी मटेरियल आपके आगे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में तैयार हो जाएगा। आगे आपकी चॉइस है, चाहे तो आप एक बड़े बर्तन में ले लीजिए, या आजकल कुल्फी के मॉल्ड्स आ रहे हैं उसमें कटे हुए फ्रूट और टूटी फ्रूटी डालिए और ऊपर से ये मिक्सचर डाल दीजिए। और हम लोग बड़े बर्तन में भी ऐसे ही करेंगे कि पहले फ्रूट्स की लेयर और टूटी फ्रूटी की लेयर और ऊपर से ये मटेरियल डाल करके इसको फ्रिज में कम से कम 6-7 घंटे के लिए प्रिजर्व कर दीजिए, और 6-7 घंटे के बाद जो मटेरियल तैयार होगा उसका आनंद लीजिए।
1: और आइसक्रीम खाते हुए गर्मी को दूर भगाइए, और बहनों घर में आइसक्रीम बनाइए, खाइए। अब हम आपसे लेते हैं विदा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी IGL ने CNG की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी विभागों को सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग और ईंधन बचाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने दोनों विभागों में सरकारी वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रभावी कार्रवाई शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने अपने काफिले से पायलट वाहन को भी हटा दिया है। समीक्षा के बाद मंत्री के कार्यालय से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि सरकारी वाहनों का उपयोग केवल आवश्यक सरकारी और जन कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा दें, अनावश्यक यात्रा से बचें और ईंधन बचाने के लिए वाहन पूलिंग को अपनाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को वाहनों की लॉगबुक और ईंधन के खर्च की नियमित रूप से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम व मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हिसार केंद्र का संचालन करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। एक समय में आकाशवाणी ही हमारे पास सूचना, जानकारियों व मनोरंजन का माध्यम था। बदलते परिवेश में आज भी आकाशवाणी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी आकाशवाणी के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। कैबिनेट मंत्री ने मैराथन को झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आज मैराथन में हिसार से बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों, खेल प्रेमियों सहित आम लोगों ने भाग लिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई को अहर्ता तिथि मानकर हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि बीएलओ 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे तथा प्रारंभिक प्रकाशन 21 जुलाई को सभी प्रकाशन स्थलों व मतदान केंद्रों पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान दावे और आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार देर रात एक गर्भवती महिला का प्रवेश द्वार के निकट प्रसव होने की घटना की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जांच फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रचना की अध्यक्षता में गठित जांच समिति कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी और इमरजेंसी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिजनों को इमरजेंसी द्वार से प्रवेश होने की जानकारी नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: हमारे सभी सुनने वालों को अर्चना मिश्र का नमस्कार। आज फोन इन कार्यक्रम है। थोड़ा सा व्यवधान कार्यक्रम के आरंभ में आया, जिसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब हम आपके आपके आपसे मुखातिब हैं। और हमारे नए श्रोताओं के लिए अपने टेलीफोन नंबर हम बता देते हैं। आज फ़ोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 01262-255-446, 255-447 और 255-448। ये तीन टेलीफोन लाइन आपके लिए हैं। और पहली कॉल देखते हैं किसकी है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा मैडम।
0: जी वर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारी आवाज सुन रही है
1: जी मैडम। शुरू शुरू में तो नहीं आई थी पर आने लगी मैडम।
0: जी जी जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए और उसमें गाने के बोला दिन ता ना दिन ता, ये गाना सुनूंगा मैडम।
0: अच्छा, ये गाना आप सुनेंगे, आपको सुनवा दें।
1: थैंक यू मैडम
0: जी, शुक्रिया आपका।

0: हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, मैं सुंदरपाल कोशिश गांव केलंगा से दीदी।
0: जी, आपका स्वागत है सुंदरपाल जी। बताइए कैसे हैं और कौन सी फिल्म का गीत सुनवाएं आपको?
1: दीदी मैं वो जल्दी से गाना से पुरानी खबर को की लगी आवाज से लता की, वो फिल्म का नाम तो मेरे को ना तन मन तेरे रंग रंगूंगी उसका
0: अच्छा,
1: गाना से कोई
0: ऐसा गाना है। अरे का फिल्म का नाम कौन है बेरा?
1: बेरा तो उसे जरिए कई बार लोग कहते हैं अर्चना है दीदी, अर्चना है फिल्म का नाम।
0: तो ये गाना आपने सुनवा दिया। चलो जी,
1: ठीक
0: आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं
1: है दीदी।
0: जी। शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार,
1: नमस्कार
0: कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम
0: जी, नमस्कार कौन बोल रहे हैं?
1: जी रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ, गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से।
0: बहुत पुराने आप हमारे श्रोता हैं रामधारी जी, पहले तो ये बताइए कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आकाशवाणी के सफर में हमेशा ही अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, हमें भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है रामधारी जी। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनवा?
1: मैं आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहूंगा।

0: दिन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए

0: अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो,
2: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: कार्यक्रम सुननीय सारे बाण भाइयों ने दलजीत भाई की राम राम। किसान भाइयों, मौसम का जिक्र करा तो गर्मी खूब बढ़ रही है, और विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमान के हिसाब से बात करा तो आज जो मौसम है 3-4 दिन के बाद कम से कम 2 डिग्री की बढ़ोतरी और भी होने वाली है। मौसम में फुल गर्मी में रहेगा, लगभग यूँ मान के चलो कि चौपाल के क्षेत्र की बात करें तो 44 डिग्री तक 3-4 दिन में मौसम पहुंच जाएगा, ये पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अपने पूरे प्रदेश के हिसाब से काम दाम के हिसाब से बात करा तो कुछ अपनी चारे की फसल हमने बो रखी है, इबाल में उनमें पानी देना है, पानी की पूर्ति जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चारा नहीं बढ़िया तरीके से पनप पाओगा। रही बात अपने और काम की, जिन भाइयों ने जमीन की बाह समारी कर रखी है, बाह के छोड़ रखे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तेज धूप लगेगी उसका फायदा होगा। कुछ उसमें जमीन जनित जो बीमारियों हैं वह खत्म हो जाएंगी, अच्छी तेज धूप पड़ेगी, सूत्रकर्मी वगैरह जो है जमीन में वो खत्म हो जाएंगे, आगे के लिए जमीन ठीक हो जाएगी, उसकी तासीर ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अपने काम हैं वो इस मौके के हमने साथ के साथ निपटा देने हैं। एक तो जिन भाइयों ने मिट्टी पानी की जांच करवानी है वो, जिन ने खेत समतल करना है वे, जिन ने गोबर की खाद गिरनी है वे, ईब समय रहते अपने काम ने निपटा लें। दिन के टाइम पर बहुत घनी गर्मी हो जाए है तो सुबह शाम इस काम नाम निपटा सका, हाँ थोड़ा सा शाम का टाइम कर ले, थोड़ा सुबह कर ले, दिन में अपना आराम कर ले, और कितने बार भी तराना जाना है वो काम आम कर सका हाँ, दिन में कोई पशुधन की संभाल करनी है वो कर सका हम काम है। लगे तो हमने रहना है, लेकिन कुछ आराम भी जरूरी है शरीर की खातिर, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में हमने कितने बाहर जाना पड़े तो पूरा जापता करके सर के ऊपर को छोड़ के कोई सूती कपड़ा रख के उसके बाद दे जाओ। और पशुधन की तो बात करां तो देखो इस मौके पर पशुधन ने भी गर्मी लग गए है, जित बांधना हो पंखे पंखे भाइयों ने करे खें इंतजाम और करे लेना चाहिए, गर्मी ना लग गए ठीक ठाक वो बंधे रहे, लेकिन 1-2 घंटा सुबह के टाइम में थोड़ा सा कच्चा में बांधने की कोशिश करें, जब बांधने का मौका कितने लाग जाए पेड़ के नीचे आवाज़ ही तो लग दी हो। और ईब मच्छर की तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मच्छर तो जब आओगे जब हल्की फुल्की कोई बारिश शुरू हो लेगी, ईब तो इतनी गर्मी पड़े है मच्छर भी लगभग मरे गए नहीं समझ ले, क्यों हो गया थोड़े बहुत घर घर में एक आध मच्छर निकड़ा हो वो एक अलग बात है, तो ये अपनी संभाल करें। और इसके साथ है जो दूसरे काम हैं, कृषि के साथ हम कई तरह के काम करा हाँ, एक तो पशुपालन का है, पशुपालन का काम बहुत बढ़िया इसके साथ चालन का है, क्योंकि खेत में जो चारा है वो आ जाए, पशुओं का तरह घुमा फिरा के लेने हो तो थोड़ा बहुत वो भी काम चल गया है, और जो चारा दाना की बात करा तो वो ठीक ठाक हमारा हाथ लग जाए, अपना खुद का बोया उड़ा है वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता फिर हमारा। पशुपालन का काम भाई कर रहे हैं, कुछ मछली पालन का काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो थोड़ा सा इस लाइन पर अटके हैं, कोई व्यापारी कशाब तो कर रहे हैं, लेकिन एक और ऐसा काम है अगर जो खेती करते करते साथ में हमें कर सका हाँ, वो है मधुमक्खी पालन का। आज की अपनी चर्चा भी यही रखेंगे कि इस मौके पर संभाल की करनी है, और बात तो बाद में करेंगे। जो भाई शुरुआती दौर में मधुमक्खी पालन का काम करना चाहे हैं वो जानकारी लें, ये बहुत जरूरी है, जानकारी का अभाव में जिसने भी काम कराया है जो भी माई हमारा संपर्क में आया है तो उसने यही बात कही है कि कितने कितने भाई थोड़ा बहुत दिक्कत आ गया हमने, वो दिक्कत क्यों आ गया है क्योंकि देखो कोई भी नया काम कर रहा उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और जानकारी कौन देगा, सरकार की तरफ से भी दी जाओ है, इंटरनेट का माध्यम भी बहुत बढ़िया है, आज का दिन बतेरी इसी वीडियो बना के भाई गिरते हैं वो सुन सका हाँ, अपना संपर्क सूत्र भी दे दे हैं, नंबर भी दे दे हैं फ़ोन का, बात भी हम कर सका हाँ, लेकिन आस पास नज़दीक कोई भाई कर रहा है तो जाकर देख करना चाहिए, कोई काम करना है तो उसके अंदर का निकलना बहुत जरूरी है। जब हम उसके अंदर का नहीं निकले, हमने पूरी जानकारी नहीं हुई और वो काम शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ सके है, चाहे वो शहद की बिक्री में आओ, चाहे मक्खियाँ के फलन फूलन में आओ, चाहे उनकी खुराक देने में आओ, चाहे उनके प्रबंधन के बारे में आओ, वो दिक्कत आ सके है। भाई दो रजावें जो इस तरह का काम कर रहा है उससे बातचीत करें, कुछ थोड़ी बहुत वो मदद भी कर सके है। मक्खी ले आनी है उनका भी कोई इनको प्रबंध करवा सके है। बक्से कितने बनवाने हैं, नई तकनीक के बक्से कौन से हैं, ज़्यादा लंबे समय तक कौन से चल जाएंगे, ये सारी बातें जो ये काम करने वाले भाई हैं उनसे मिलकर जब काम शुरू करें। और जो काम कोई एक दो दिन खातर तो नहीं करना, ये महीने दो महीने खातर नहीं करना, यो काम तो सालों साल खातर करना है। और अकेला न्यू भी ना माने कि हमने मक्खी पाली, शहद काढ़ा और बेच दिया, ना, उसमें कई सारे और मुनाफे हैं। न्यू का आकरण भाई करणीय का तो देखो जो करते वो है ना, उसमें वो कितने कितने रास्ता अपना काट लिया करे, जिसने ज्ञान हो है वो 10 जगह तक कमाई लिया करे। इब जो इसके जानकार आकाशवाणी माओ हैं, हम भी उनसे पूछा हाँ भाई बताओ किस तरह का के थारा तजर्बा रहा, तो एका तो मधुमक्खी पालक भाई साहब है अकन्यू कहे कि भाई दलजीत भाई हम एक जगह तो मुनाफा नहीं लेंदे, हम तो 4-5 जगह तो ले वहाँ मुनाफा और खूब रवे है, लेकिन कुछ भाई जो जानकारी का अभाव में जिन्हें काम करा है ना, वो आके न्यू भी कह दें जी मारे तो गणाहा नहीं फायदा रहा था, वो कारण एक के बना है कि उन उसका तजुर्बा नहीं था। तो जो ये बात चली है इसमें एक के बात आई है मुख्य कि पहले तो अपना तजुर्बा, अपना काम का तरीका, वह किस तरीके से काम करना है वो सारा सीख ले, उसके बाद पैसा कितना लगेगा, किस हिसाब से ये काम करना है, खेत में हमारा कितनी जगह है, वो सारी बात फिर बाद में आ जाएंगी। और पहले एक रागनी सुनाएंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे जो मधुमक्खी कॉलोनी है ना उनकी फिर देखभाल किस तरीके से करी जाया करे। रागनी सुनाएंगे जिसके गायक कलाकार होंगे संदीप कुमार और उनके साथी।

या तो भाई अनुरागनी सुने, गायक कलाकार थे संदीप कुमार और उनके साथी, और जिक्र कर रहे थे कि भाई जो मधुमक्खी कॉलोनी है उनकी देखभाल आपने किस तरीके से करनी है। मधुमक्खी कॉलोनी यानी जो छत्ते हैं उनकी सही देखभाल आपने नियमित तो निरीक्षण करना पड़ेगा, पर्याप्त उसमें भोजन भी पहुँचाना पड़ेगा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमने जब मधुमक्खी कॉलोनी हमारी ठीक रहेंगी। मुख्य रूप से बात करें तो छत्ते की साफ सफाई, रानी मधुमक्खी की जांच, बीमारियां और कीटा से बचाने खातर जो कि इसमें माइट्स की दिक्कत आ जाया करे, तो मौसम के अनुसार भोजन भी देना पड़ेगा और जगह का प्रबंधन भी शिशाब्द करना पड़ेगा कि वो कॉलोनी ठीक ठाक पनप सकें। नियमित निरीक्षण और स्वच्छता की जब बात आ है तो सफाई छत के निचला जो बोर्ड है उसने नियमित रूप से हम साफ करते रहे ताकि जो उसमें मरे और कीड़े और जो गंदगी है वह इकट्ठी ना हो। फिर बात आओ प्रबंधन की, जब छत्ते में ते 10 में ते 7 फ्रेम मधुमक्खियां के भर जाए तो उन्हें बढ़ाने खातर और खाली जगह हमने फ्रेम में देनी पड़ेगी। एक अवशेष हटा दें जो खुला मोम है, पुराने छत्ते उन्हें नष्ट कर दें क्योंकि ये आगे जाकर फिर ये बीमारी और कीड़े ने आकर्षित करे हैं। रानी मधुमक्खी की निगरानी हमने करनी पड़ेगी, अंडे की जांच, रानी मधुमक्खी ठीक डाल अंडे दे रही है कि नहीं दे रही है ये जांच कर दे रहे हैं। छत्ते में एकता बनी रहे, मधुमक्खियों का उत्पादन ठीक रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। यदि हमने न्यू लग गया है कि कॉलोनी आक्रामक हो रही है, रानी मक्खी ठीक डाल काम नहीं करिए, तो 1-2 साल में रानी मक्खी ने बदल दिया, हमने इसका भी ध्यान करना है। मौसम के अनुसार भी प्रबंधन हमने रखना पड़ेगा। गर्मियां हम देखभाल किस तरीके से करनी है, सर्दी हम किस तरीके से करनी है। गर्मियां में छत्ते का तापमान ठीक ठाक बना रहे तो उस जगह पर पानी होना चाहिए, मक्खी पानी ठीक ठाक पी के आ सके, और आसपास भी पानी का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। जो छत्ते हैं उनके आसपास का जो तापमान है वो भी ठीक ठाक रहना चाहिए, और चीनी का घोल बना के जब फूलों का मौसम ना हो, सर्दियां के टाइम पे बारिश के टाइम पे फूल नहीं मिलते तो उस टाइम पे हमने चीनी का घोल भी देना है, और वो इस हिसाब से देना है बराबर मात्रा में जितनी कॉलोनी है एक बार में देना है, नहीं तो दूसरी मक्खी उड़कर दूसरे पा जाएंगी, वो भूखी ना रहे उसकी खातर हमने भोजन का भी प्रबंध करना पड़ेगा। एक कॉलोनियों का विभाजन भी करना पड़ जा रहा, कई बार आपस में कॉलोनी मिलानी भी पड़ जाया करें। जब कॉलोनी बहुत मजबूत हो जा और जो कर बसंत जैसा मौसम आ उस टाइम पर छत्तियों का विभाजन भी हम कर सका, हाँ नई कॉलोनी बना सका। हाँ यदि हमने लगा है कि कॉलोनी कोई कमजोर रह रही है तो कोई दूसरी मजबूत कॉलोनी के साथ उसने मिला दिया ताकि उसका बचाव हो सके। कुछ ये बातें हैं प्रबंधन में, इनका हमने ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन मधुमक्खी पालक भाइयों ये बात कहनी तो आसान है लेकिन इस तरह का जो काम करना है ना उसकी खातिर प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। यो जिक्र पहले भी मैं कर रहा था, यो क्यों बार बार इस चीज़ का जिक्र आ रहा है कि विलय करवाना है तो किस तरीके से विलय करवाना है, कॉलोनियों का विभाजन करना है तो किस तरीके से करना है। अगर हमने वो काम आवे ही नहीं गा, वो सही तरीका हमने पता ही नहीं होगा तो हम किस तरह कर पाएंगे। एक न्यू लग है कि ईब नहीं फूलना का टाइम है तो हो सके है वो छत्ते इसी जगह भी लेकर जाने पड़ जाए जित फूल हो, क्योंकि कुछ भाई से हैं कि समय के हिसाब से बदलाव कर दे हैं और बदलाव जब करे हैं तो अलचल बने है छत्या में, मक्खी भी परेशान हुए हैं, किस तरीके से लेकर जानी है वो सारी चीज़ हमने देखनी पड़ेंगी। एक साथ के साथ है यो विचार हमने करना पड़ेगा कि फसल ऐसी बोई जा जिसमें फूल बने, फूल बनेंगे तो नज़दीक ते मक्खियां ने शहद बनाने का काम चल जाएगा। अगर बहुत दूर ते फूलों पर तो शहद बना कर लेना पड़ गया तो फिर उनकी मेहनत भी बढ़ जाएगी। और एक विशेष बात आई है कि पानी का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। अगर पानी का प्रबंध हमने नहीं कराया तो वो मक्खी प्यासी मर जाएंगी, वो कितने पानी लेकर आएंगे। पानी का कोई चबच्चा है, कोई तालाब है, कोई खाल है या फिर चाहे किसी तरीके का बनाना पड़ो वो उनके पास बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह के आव हैं ये प्लास्टिक से के हवा भर के वो छोटे छोटे तालाब से बना दिया करें तो इस तरीके का चाहे बनाना पड़ जाओ, जब हम इतना पीछा लगा है ना तो थोड़ा बहुत और काम अतिरिक्त हमने करना पड़ जा तो वो कर लें, उसमें कोई परहेज हमने नहीं रखना है। तो कई सारी इसमें बात आई है मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल में,
एक तो समय के हिसाब से बदलाव करना है, उसके आसपास का तापमान ठीक करना है। ईब जिक्र चल रहा है कि भाई शुरुआत में मौसम का जिक्र कराया था, उसमें बात यह आई थी कि 2-3 दिन के बाद और भी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सके है। जब तापमान इतना ज़्यादा हो गया तो वो मक्खी परेशान हो जाएंगे, धूप कितनी ज़बरदस्त पड़े है, तो आसपास पानी का छिड़काव करके हम 1-2 डिग्री तापमान कम कर सका। चलो और इससे संबंधी कुछ बात होंगी वो करेंगे, टाइम रह गया तो। जिक्र एक रागिनी का हो रहा था तो गायक कलाकार एक बार फिर संदीप कुमार और उनके साथी।

तो भैया ने या तो रागनी सुनी, गाए कलाकार थे संदीप कुमार और उनके साथी, और जिक्र करे थे मधुमक्खी पालन का जो काम जो भाई कर रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान करना है। उसमें कई सारी बात आई थी। एक तो मधुमक्खी पालन का काम इसी जगह करे जित फूल हो। मान लो फिर कुछ दिन खातर फूल हैं, उसके बाद फिर फूल नहीं रहे, तो छत्ते अगर वो उठा के, वो डिब्बे उठा के उन कॉलोनिया नाम और की ले जा सका तो ले भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर फूल नहीं मिलेंगे तो मधुमक्खी शहद कहाँ तक बनाओगी। जिस काम के खातर हमने ये व्यापार कर रखा है वो पूरी तरह से सफल जब हो पाओगा जब सारे साधन संसाधन उपलब्ध हम करवा पाओगे। उसमें मुख्य रोल आया है पानी का। इब कुछ जगह ऐसी हैं कि भैया ने काम तो शुरू कर दिया। देखो, काम तो इस जगह शुरू करना चाहिए जित थोड़े से पेड़ हों, क्योंकि पेड़ों के आसपास से जो तापमान है वो कुछ कम रहा करे, उसका कारण कुछ तो छाया बनी रह गया है, जमीन में नमी भी ठीक बनी रहे है, जो भाई काम करने वाला है उसके भी बैठने का ठिकाना ठीक रह जाएगा और मधुमक्खियां ने आसपास इधर उधर घूमने में कुछ दिक्कत नहीं आओगी, और वहाँ जहाँ पर आदमी रहेगा तो वहाँ पर पानी भी आसानी से मिल जाएगा। कुछ भाई तो ऐसे हैं कई कई किलोमीटर दूर तक इन कॉलोनियों ने ले जाना है, लेकिन उनका ले जाने का अपना तरीका है कि मौसम किस हिसाब का है उस टाइम पे वो लेकर जाने हैं, यानी कि वह किसी भी टाइम लेकर चल पड़े। और अगर गर्मी का मौसम है वो मक्खी परेशान हो जाए तो कई बार मक्खी उग्र भी हो जाया करें, और वो उग्र रूप उनका कई बार बना है कि आपस में भी थोड़ा सा उनकी छीना झपटी हो जाए किसी बात पे। बात यह थी कि जेकर पहले आया था कि जो उनकी खान का देना है ना, जब मान लो एक कॉलोनी में दे दिया दूसरी में नहीं दिया तो उधर वो गंध चली गई तो वो मक्खी उस साइड में आ जाएंगी और वहां पर आकर मारामारी करेंगी। एक चाशनी की जब बात आवे है तो घनी कमजोर चाशनी नहीं देनी है, पक्की और चाशनी उनकी देनी है ताकि पूर्ति हो सके। तो बाकी और कृषि जगत कार्यक्रम में बैठेंगे सामने फिर बतलाओगे। ई बे जाजे दे दे सारे बण भैया ने। राम राम।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: अगर ये तो है,
1: रुपए में अगर हम उसको आंकते हैं तो 7,000 करोड़ का नुकसान हमारे इनके कीड़ों के कारण हो जाता है।
2: 7,000 करोड़
1: करोड़
2: का नुकसान
1: रुपए
2: इन कीड़ों की वजह,
1: कीड़े की वजह से हो जाता है।
2: अच्छा,
1: और ये जो संक्रमण आता कहाँ से है
2: जी?
1: तो इसमें 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो ये जो पुरानी बोरियाँ हैं इनसे आ सकता है, या जिसमें ट्रांसपोर्ट किया आपने अनाज, कहीं जो ट्रेली है या गाड़ी है या कहीं बग्गी है जो भी, उसमें कहीं कहीं छेद में आपका ये जो है कीड़े छिपे हुए होते हैं।
2: अच्छा,
1: तो जैसे ही आपको ये गेहूँ या जो चना है मिलता है तब उसमें वो उसमें मिल जाते हैं।
2: अच्छा, तो जैसे ये सावधानी भी बरत ले हैं काफ़ी, कुछ सब कुछ कर लें उसके बाद भी हो जाता है डॉक्टर?
1: हाँ जी, ये बिल्कुल मतलब छिप, कहीं जैसे हमें कोई, जैसे हमारा कमरा है या कोई जहाँ हमने स्टोर करना है तो उसमें कहीं दरार होती है, या
2: अच्छा,
1: कहीं कोई चीज़ रखी, कोई पुरानी चीज़ पड़ी है उसके नीचे छिप जाते हैं, या कहीं दरार में छिप जाते हैं, या पुरानी बोरियों में छिप जाते हैं, तो वहाँ से ये आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे थ्रेसिंग होती है तो
2: हाँ,
1: उसमें तो बिल्कुल साफ होता है गेहूँ या चना जो भी है,
2: ठीक
1: उसके
2: बात।
1: बाद ये आप उसमें कहीं कहीं कहीं से भी उसमें मिल जाते हैं, गाड़ी से या कहीं से भी उसमें आक्रमण हो जाता है इनका।
2: अच्छा, लेकिन जो घरों में करते हैं, टंकी में कर लिया हमने, पुराने ठेके हमारे पास है, जो कुछ है वहाँ भी नहीं बचते ये तो?
1: हाँ, पुरानी टंकियों में कहीं कहीं दरार होती हैं, तो उसकी चाहे एगलिंग है, मतलब जैसे कि अंडा कहीं रह जाता है उसका, या उसकी कहीं सुंडी है, उसका कहीं एक पैर जहाँ अडल्ट है, प्रोट जिसको हम बोलते हैं, तो कहीं कहीं उस छिपा हुआ होता है। जैसे ही वैसे तो ये नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च तक ये उसमें रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है।
2: अच्छा,
1: उसके बाद इसको अगर जैसे वातावरण मिलता है, इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ है, इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, इसकी नई पीढ़ी शुरू हो जाती है,
2: शुरू हो जाती
1: तब
2: है।
1: से ये इसका
2: चलिए, अब तो
1: चली।
2: हमारा जो विषय है कि जो ये हमारी फसलें हैं, हम गेहूं की बात करेंगे, चना है, सरसों है, जो है जो भी भाई ने रखनी है रबी वाली, तो वो उनका सही सुरक्षित भंडारण क्यों कर कराया जाए?
1: हाँ जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा संपूर्ण भाई कि इसमें एक तो अगर हो सके तो हमने नई बोरियाँ लेनी चाहिए,
2: अच्छा,
1: अगर संभव हो सकता है। अगर बाय चांस हमारे को नई बोरियाँ नहीं मिलती, अगर हमारे को पुरानी बोरियाँ हाँ यूज़ करनी पड़ रही हैं, तो उसको हम उसको दवाई से वो कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, उपचार कर लेते हैं दवाई से।
2: उसमें डुबो के भिगो के
1: उसमें
2: सुखा के फिर?
1: दो तीन दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मेलाथियन दवाई लेनी है तो उसमें 0.1% गोल्ड यानी कि 50 EC यानी कि एक भाग दवाई का और 500 भाग इसके पानी का।
2: अच्छा,
1: अगर साइपरमेथ्रिन लेनी है 25 EC की तो उसमें एक भाग दवाई का और 2500 भाग पानी का। और अगर
2: 2500, एक बार समझ में नहीं आता, 1 लीटर में कितना मिला?
1: 1 ml दवाई का 2.5 लीटर पानी,
2: 1 मिलीलीटर दवाई
1: और 2.5 ml 2.5 लीटर पानी,
2: 2.5 लीटर पानी।
1: हाँ जी,
2: 2.5 लीटर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: अच्छा,
1: तो तब इसको 10 से 15 मिनट तक जितनी भी बोरियाँ आपने डुबोनी है उसी से आपसे अपना इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। किसी बड़े टैंक में बनाना तो वहाँ बना लेते हैं, किसी छोटे बाल्टी में बनाना तो वहाँ बना लेते हैं। जितनी भी बोरियाँ आपने यूज़ करनी है उस हिसाब से हम इसका घोल बना लेते हैं, और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक बोरियों को डुबाएं, डुबो कर रखें ताकि वो अच्छी तरह भीग जाएं, और फिर उनको उठा के वहाँ से छाया में सुखाना अपने को
2: जी।
1: और एक दूसरी चीज़ और ये है कि जो पुरानी टंकी है हमारे को, क्योंकि जो इन जो कीट हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादातर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही ज़्यादातर वो मतलब सूट करते हैं उनको, अच्छा टेम्परेचर मानते हैं उसके लिए। तो जो पुरानी टंकियाँ हैं उसमें अगर मान लो कहीं पुराना गेहूँ रखा है या पुराने जो भी चने रखे हैं, तो उसको पहले तो हमारे को उसको निकालना पड़ेगा और उसको धूप में रख दो 3-4 दिन पहले।
2: यानी पुराना अनाज तो बिल्कुल नए के साथ
1: पुराना
2: अनाज
1: तो बिल्कुल नए के साथ मिलाना ही नहीं, मिलाना नहीं है, और उसको भी खाली करके धूप में रख दो। पीछे अपने कई दिन से टेम्परेचर 40-45 के आसपास, 40-42 के करीब हो रहा था,
2: जी जी।
1: तो अगर 3-4 दिन आप उसको धूप में रखोगे तो पुराना जो कीट वगैरह है उसमें अगर कहीं छिपा भी है तो वो उसमें बिल्कुल उसमें मर जाएगा।
2: अच्छा,
1: हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी वो,
2: सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन कई बार ये सब कुछ बाजे बजा ले हैं, उसके बाद भी बीच में देखे हैं कि गेहूं के अंदर भी जो है वो नुकसान हो गया, चना में भी डोरा आ जाता है डॉक्टर साहब, तो ये कितना आजा है?
1: हाँ, आता तो वहीं से जी, कहीं कहीं आसपास की कहीं कहीं छिपा होता है, कहीं जैसे दरार है कहीं उसमें से निकल के कहीं उसमें टंकी में भी कहीं कहीं छेद हो जाता है, रह जाता है, तो उसमें से आ जाता है ये। क्योंकि एक बार आ जाता है कोई भी अगर पेड़ है कोई भी प्रोड का, जो वैसेक प्रोड आ जाते हैं 2-3, अगर उससे फिर ये एगलिंग शुरू कर देते हैं।
2: अच्छा, अंडे
1: देने शुरू कर देते हैं, और एक प्रोड अपने जो जीवन चक्र में 300 से 400 अंडे तक दे देता है।
2: अच्छा,
1: तो फिर अंडे देने के बाद तो इनका जो साइकिल है वो 30-31 दिन का होता है, तो उसके बाद ये फिर अपने लार्ज स्केल पे फैल जाते हैं। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इनका सुटेबल होगा, वातावरण अनुकूल होगा इनका, तो तब उसमें एगलिंग करके अंडा देना शुरू कर देते हैं और

0: लार्ज स्केल पर ये बढ़ जाते
1: अब
0: हैं।
1: आगे चाल के तो गर्मी के बाद चमासिया होंगे, जो
0: हाँ जी
1: उन चमासिया में नमी पकड़ गया है और उसके बाद
0: हाँ
1: सब
0: नमी,
1: जगह
0: तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम थ्रेसिंग करते हैं उसके अंदर भी नमी होती है गेहूँ के अंदर या चने के अंदर, उसको
1: हाँ
0: हम कई बार तो क्या है कि सीधा उसमें टंकियों भर लेते हैं, लेकिन अगर हर एक जो कीट है उसको एक विशेष नमी की जरूरत होती है।
1: जी
0: अगर 10% से नमी कम है गेहूँ में तो उसमें ये कीट नहीं लगता।
1: अब उसका
0: तो
1: बेरा क्यों कर पड़ा जा कि 10% तक कम
0: उसके लिए
1: है।
0: तो वैसे मॉइस्चर मीटर आते हैं वैसे तो, लेकिन हम उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा हम वो एक बार उसको टंकियों में डाल के 3-4 दिन उसको हम सुखा लेते हैं
1: सुखा
0: लार्ज को।
1: लें
0: अगर कटक उसके चबा के देखते हैं अगर कटक की आवाज़ आती है आपको तो उसका मतलब उसमें नमी 10% से नीचे है,
1: अगर वो चिकला सा है, इसका मतलब नमी है बस
0: उसका
1: उसमें।
0: मतलब ये नमी है जी। तो
1: अगर
0: ये
1: कड़क का
0: मोटा
1: टूट जाए दांत के
0: तो इसका
1: नीचे
0: मतलब
1: दे
0: नमी नहीं है।
1: तो इसका मतलब ठीक है,
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: भंडारण के लायक
0: तो ये
1: है।
0: इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को।
1: अब तीनों चारों फसलों का हमने अलग अलग बताओ डॉक्टर साहब, गेहूं का करें तो क्यों कर करें, चना का करें तो क्यों कर करें, और सरसों वगैरह दाड़े वगैरह हैं उनका क्यों कर करें।
0: तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की,
1: हाँ
0: गेहूँ में अपने यहाँ हरियाणा में तो ज़्यादातर टंकियों में यूज़ करते हैं,
1: टंकियों
0: टंकियों
1: में
0: में
1: करें
0: भरते
1: मैं।
0: हैं।
1: हाँ बिल्कुल जी
0: तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा उसमें नमी कम हो, 10% से कम हो। उसके बाद हमने उसमें स्टोर कर लिया, जैसे टंकी में कर लिया, टंकी हमारी होती है करीब 8 फीट के करीब होती है, 8 या 10 फीट जो है,
1: जी
0: 10 फीट के तो गाँव में कई बार मकानी 10-11 फीट के तो मकानी होती है, तो 8 फीट के करीब होती है टंकियों में। तो अगर उसके अंदर फिर भी अगर आपने उसमें संक्रमण आ गया उसका कीटों का, तो हम उसमें एल्यूमिनियम फास्फाइड जो सल्फोज जिसको हम बोलते हैं
1: जी
0: वो गोली रखते हैं। गोली आजकल बैन हो चुकी
1: आजकल
0: है,
1: पाउच आते
0: हाँ
1: हैं जी।
0: पाउच आता है, वो 3 ग्राम की गोली होती है, 10 क्विंटल गेहूँ एक गोली रखते थे, यानी कि आजकल 1.5 ग्राम का एक पाउच आता है, 3-3 ग्राम के भी पाउच आने लगे हैं, तो उसको एक पाउच को हम निकाल के रख देते हैं। इसमें ये ध्यान रखेंगे, कई किसान भाई क्या करते हैं बीच में गेहूँ आके बीच में पाउच फंसा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। अगर हमारी 8 फीट की टंकी है तो उसमें आप 6.5 फुट गेहूँ भरिए, 1.5 फुट खाली छोड़िए। अगर पूरी 8 फीट की में 8 फीट की डाल दिया तो उसमें वो आपकी गेहूँ खराब होने की चांसेस ज़्यादा हो रहती हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ने के बाद कई फंगस भी अटैक कर देती है, फंगस का आक्रमण हो जाता है, तो एक वो गेहूँ इकट्ठे होकर सड़ जाते हैं बीच में।
1: एक हमारी आदत तो कई तरह की है डॉक्टर साहब, जैसे ही अपने नया गेहूं आया खूब सुखा कर सब की में करके अपना भर दिया टंक ठेका में, उसके बाद अपना पाउच ले आओगे सल्फा साड़ा धर देंगे और उसमें चलो सावधानी बरतने, लेकिन सोचने लगे भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, जबकि वो तो शायद कीड़ा आने के बाद की बात है।
0: हाँ कीड़ा आने के बाद की बातें ही, अगर पाउच रखना आपने
1: हाँ
0: कीड़ा आने के बाद की बातें हैं, अदरवाइज रखने की कोई जरूरत नहीं
1: पहले
0: है,
1: कोई जरूरत नहीं उसकी
0: पहले
1: रखने
0: कोई जरूरत
1: की।
0: नहीं है।
1: हाँ वो
0: अगर
1: नुकसान
0: आपको
1: करेगा बल्कि।
0: हाँ जी नुकसान करे, नुकसान तो उसमें कोई मतलब इकोनॉमिक की कंडीशन ख़राब ही होगी अगर रोकेंगे, यार घर के में अंदर सावधानी नहीं रखते तो भी वो हानिकारक होता है।
1: जी
0: तो अगर आक्रमण होता है तभी रखने की जरूरत है हमारे को, उसमें तो आप चेक करते रहना पड़ेगा आपको भाई।
1: मैं मान ले टंकी में एक बार हाथ दे दिया
0: हाँ
1: पूरा,
0: जी
1: बाहर निकाला उसमें भूर सा लग
0: हाँ
1: गया
0: भूसा
1: हाथ
0: लग
1: के,
0: गया,
1: इसका मतलब कीड़ा उसमें
0: इसका
1: है,
0: मतलब कीड़ा है।
1: लाग होगी
0: हाँ
1: उसमें,
0: जी हाँ
1: और
0: जी,
1: फिर पाउच रखना है
0: फिर
1: वो।
0: पाउच रखने का फायदा है। अगर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक दो दिखता है आपको तब रख देते हैं, लेकिन जो उसके सत्ता है कि ऊपर रखें आप बिल्कुल
1: हाँ
0: बीच में,
1: उसकी
0: हाँ बीच
1: गैस
0: में
1: बनती है
0: रखना,
1: वो नीचे जाएगी उसके बाद ऊपर
0: हाँ कम से
1: आओगे।
0: कम वो 8 फुट नीचे जाती है गैस।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो 8 फुट की टंकी होती है तो इसलिए बीच में पाउच फंसाने की कोई जरूरत नहीं होती, तो ऊपर उसको सत्ता पर रखिए। लेकिन इसमें एक ध्यान रखते हैं, कई बार क्या कहते हैं फार्मर किसान भाई, भाई पाउच हमने रख दिया और फिर भी उसमें सुरसी रहेगी, उसका एक कारण ये होता है कि कहीं न कहीं से आपकी उसमें दरार में या
1: लीक हुई है।
0: लीक हो रही है, उससे उसको ऑक्सीजन कीट को मिल रही है। अगर ऑक्सीजन उनको कीट को मिलती रहेगी तब उसकी मतलब उनकी मोर्टलिटी यानी कि वो नहीं मरते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उसको चारों तरफ से आपने पाउच रख दिया, टंकी बंद कर दी, एक तो जो उसका सुराग होता है निकालने का, गेहूँ निकालने का नीचे,
1: जी
0: और एक बीच कहीं साइड में भी उसके जो दरारें होती हैं कहीं, तो उनको आपको मिट्टी से बंद करना पड़ेगा
1: या
0: किसान
1: जोड़
0: भाइयों
1: होते हैं
0: को।
1: उनके
0: हाँ जो
1: जो।
0: जोड़ होते हैं उनको मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बंद करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल से उसको
1: वो
0: खोलना नहीं है,
1: बिल्कुल टाइट होनी चाहिए सील टाइट,
0: एयर
1: ये नहीं
0: टाइट।
1: कि
0: हाँ
1: जरा
0: जी
1: सी भी लीकेज होगी तो वो कहीं ना कहीं आसपास का वातावरण भी खराब करेगी,
0: यस,
1: क्योंकि जहरीली गैस है
0: ये
1: वो।
0: तो मैं तो यही कहता हूँ जी, घर में अगर टंकी रखने तो उसमें तो आपने सल्फोस की गोली डालनी ही नहीं,
1: डालनी
0: अगर
1: ही नहीं
0: डालनी
1: चाहिए।
0: ही नहीं चाहिए, अगर आप वहीं रह रहे हो और उसी में सल्फोस डालते हैं तो खतरनाक हो सकता है परिवार के लिए। इसको तो अलग से कमरे में रखो जहाँ आप नहीं रहते,
1: और उस कमरे में भी कोई नहीं जा, मतलब उसने भी
0: एक
1: बंद
0: हफ्ते
1: करके
0: दिन
1: रखा है,
0: तक, एक हफ्ते तक तो कोई भी नहीं जा उसमें, तो इस बात का थोड़ा
1: क्योंकि
0: ध्यान
1: बड़ी
0: रखना पड़ेगा।
1: खतरनाक है ये गैस और बहुत जहरीली है, तुरंत प्रभाव दिखाती
0: हाँ
1: है।
0: जी बिल्कुल, तुरंत प्रभाव दिखाती है, तो इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है।
1: अच्छा अब कुछ जैसे हम चलो एक तो बड़ा स्टॉक हो गया डॉक्टर साहब, अब छोटे छोटे डिब्बे में कोई 5 किलो कोई 7 किलो दाल रखी है या कुछ चने रखे हैं कुछ है, उसमें भी लाग हो जाती है उसका
0: हाँ जी,
1: मतलब।
0: चने की बात जैसे हम करते हैं दाल या चने जो है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आजकल

0: जैसे ऑर्गेनिक की भी बात भी करते हैं, तो उसमें तो सिंपल हम रेत डाल देते हैं, 7 सेंटीमीटर ऊपर उसकी तय जमा देते
1: बाड़ू
0: हैं,
1: रेत।
0: बाड़ू रेत की, या राख भी डाल देते हैं या
1: अच्छा,
0: बाड़ू रेत डाल देते हैं, तो 7 सेंटीमीटर ऊंची उसमें तय जमा देते हैं, तो रेत लगाए
1: सात
0: ऊपर।
1: सेंटीमीटर तो बलाते होगी।
0: हाँ जी बिलाते होगी, तो उस इतना रख ऊपर डालने के बाद फिर उसमें कीड़े लगने की कोई, जैसे घुन वगैरह लगता है तो उसमें कोई चांसेस नहीं रहते जी।
1: अच्छा, नीचे तली में भी लगाओ या ऊपर ऊपर बस?
0: आप ऊपर डाल दो, जब तक नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा, क्योंकि
1: हाँ
0: नीचे भी जाएगा ना वो,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: ऊपर तक उसको आने दो।
1: फिर ऊपर बनाते कि
0: हाँ बिलाते
1: उतना
0: को उसको।
1: आनी
0: हाँ
1: चाहिए
0: जी हाँ
1: ना
0: जी,
1: तय उसकी।
0: तय उसकी आनी चाहिए, तो तब उसमें कोई चांसेस नहीं है उसके कीट के लगने के। अगर आपने छोटी उसमें रखना है,
1: हाँ,
0: इसी को जैसे दाल लाते हैं बाजार से, या छोटे उसमें रखते हैं 1 किलो के
1: एक किलो के हो
0: या
1: जाए
0: दो किलो रखते
1: मतलब।
0: हैं,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: उसमें तो सिंपल हम क्या करते हैं कि सरसों का तेल लिया 7 ml, या मूंगफली का तेल ले लेते हैं,
1: अच्छा,
0: तो उसके अंदर उसको चने के मसल लेते हैं। अगर कई बार तो जैसे हल्दी भी ले लेते हैं,
1: हाँ जी,
0: 3.5 ml ना ये सरसों का तेल लिया, और 1.75 g हल्दी ले ली, तो उसमें 1 किलो सीड चने हैं या कोई भी दाल है उसके ऊपर अच्छी तरह उसको रगड़ दिया, फिर
1: रगड़
0: उस
1: दें उसके
0: पैक
1: अंदर।
0: उसमें डिब्बे में डाल के सुरक्षित रख देते हैं, उसमें फिर कोई लाग होने की चांसेस नहीं रहते।
1: अच्छा, ये तरीका भी है
0: हाँ जी,
1: मतलब,
0: ये भी
1: माड़ी
0: तरीका
1: सी
0: है।
1: हल्दी, थोड़ा सरसों का तेल या मूंगफली का, और उसके ऊपर एक उसकी कोटिंग कर
0: हाँ
1: दी,
0: जी, एक कोटिंग कर
1: उसके
0: देते
1: ऊपर
0: हैं।
1: एक तय सी आ जा,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और वो फिर ठीक है।
0: वो बिल्कुल फिर ठीक रहता है जी। तो इसमें एक और चूहे भी नुकसान करते हैं जी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो चूहो, अगर मान लो अनाज घर में रखा है और चूहों का जो आक्रमण है, तो चूहों को लिए तो सल्फास तो रख नहीं सकते,
1: जी
0: क्योंकि वो तो उसके तो बिल होते हैं कहीं कहीं, जैसे गांव में कई अपने सारे का मकान पक्का नहीं होता, तो
1: जी
0: कहीं कहीं बिल में छिपे रहते हैं, तो वो भी उसको काफ़ी नुकसान करते हैं। तो उसके लिए हम जिंक फास्फाइड आती है,
1: हाँ
0: तो उसको हम 25 g लेते हैं,
1: अच्छा,
0: और 20 ml सरसों का तेल लेते हैं, 1 किलो दाल या बाजरा ले लिया या कोई भी मोटा अनाज ले लिया, उसके ऊपर तेल लगा के, और किसी डंडी से 25 g जो जिंक फास्फाइड लिया है उसको हम डाल देते हैं, और चूहा बड़ा स्याणा होता है जी, ये एकदम नहीं खाएगा।
1: जी
0: अगर आपने उसके किसी फार्मर के किसी किसान भाई के घर में चूहे हैं, तो उसको पहले 2-3 दिन पहले उसको आदत डालनी पड़ेगी, कटोरी में या कहीं दूसरे बर्तन में बगैर मतलब दवाई के आपको वो दाल या चना जो है या बाजरा जो है वो उसे रखना पड़ेगा कटोरी में।
1: यानी वो पहले थोड़े दिन, कुछ 2-3 दिन जमाने पड़ेंगे,
0: हाँ
1: हैं?
0: जी,
1: बढ़िया
0: विश्वास में
1: तरीका,
0: लेने पड़ेंगे वो।
1: विश्वास में लेने
0: हाँ जी
1: पड़ेंगे, फिर उन दवाई
0: हाँ, फिर
1: दो।
0: तीसरे दिन आप एकदम उसको चेंज करके वो दवाई वाला जो वो है उसको हम
1: हाँ
0: रख सकते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जैसे ही आपने उसमें रखा, तो दरवाजे हम बंद करके सोते हैं रात को,
1: जी,
0: तो एक बोरी लेते हैं हम, गिल्ली बोरी कर लेते हैं, और उसको जो दहलीज होती है अपनी उसके आगे पीछे अंदर रख देते हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: ये दवाई खाने के बाद चूहा पानी के लिए दौड़ेगा,
1: अच्छा
0: पानी की चाहिए उसको।
1: जी,
0: और आपको मतलब सवेरे उठ के देखने की जरूरत नहीं है, चूहे कहाँ मरे पाएंगे, सारे उस बोरी के ऊपर ही मरे पाएंगे, तो ये इसका गिल्ली बोरी करके रख देते हैं दहलीज के
1: अच्छा
0: पास,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: अगर भी कोई भी चूहा है तो आपके अगले दिन उस बोरी के ऊपर मरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो पानी के लिए वहाँ आएगा वो, और वो दवाई खा के लोट पोट वही होया वो मिला मिलेगा वो।
1: चलो, मतलब इस तरह से, क्योंकि बड़ा नुकसान करते हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया ना कि 7,000 करोड़ का
0: हाँ जी
1: नुकसान जो हमारा सालाना हो जाता
0: हाँ जी
1: है, तो बहुत बड़ा ये एक आंकड़ा है।
0: हाँ जी
1: चलिए, अब थोड़ी सी सुरक्षा, बीच बीच में भी थोड़ी संभाल करते रहें इनकी।
0: हाँ जी, बीच में एक बार चेक करते रहे, तो महीना दो महीना के बीच में गैप दिया, फिर हाथ मार के देख लिया, और उससे अगर आपको लगता है तो दवाई रख दीजिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा,
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: जैसे आपने 7 दिन के बाद उसको जो दवाई रखने के पाउच रखने के बाद 7 दिन के बाद खोलना है, हवा
1: अच्छा
0: लगानी है, अब
1: अच्छा
0: ये नहीं है बिल्कुल पैक कर दिया कि खोलना नहीं है, तो उसके अंदर अदरवाइज खोलेंगे नहीं तो क्या होगा कि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वैसे ही बीच में एक फंगस आ जाती है, अफ्लाटोक्सिन जिसको हम बोलते हैं, वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर का कारण बन जाती है, अगर वो ऐसा
1: अच्छा
0: ऐसा गेहूं खा लेते हैं तो हम, तो वो भी
1: तो
0: खतरनाक
1: कई बार
0: होती है।
1: वो आली सी लाग जाए तो
0: आड़ी
1: बीच
0: वही वही
1: में
0: जो है
1: जल्दी
0: फंगस जो है
1: बिल्कुल।
0: अफ्लाटोक्सिन
1: हाँ
0: जिसको हम बोलते हैं, तो
1: हाँ
0: उसको अगर ऐसा कोई गेहूं का दाना मिलता है तो उसको निकाल के
1: निकाल दें उसमें।
0: अलग से बाहर फेंक दें।
1: अच्छा, कुछ भाई जैसे अपने देसी तौर तरीके हैं जी, अपने नीम की पत्तियां हैं वो रख दी बीच में सुखा के, या कुछ भाई माचिस की तिल्ली है वो डाल देते
0: हाँ
1: हैं
0: ये कुछ आयुर्वेदिक
1: ये।
0: वो करते हैं, लेकिन ऐसी कोई मतलब नीम की पत्ती डाल देते हैं अगर छोटे
1: अच्छा
0: उस पे है, लेकिन उसके लिए आजकल नीम की पत्तियों में भी डालने के बाद भी लगा हुआ मिल जाता है, तो ज़्यादा मतलब हम ये नहीं कह सकते भी नीम की पत्ती डालने के बाद लगेगा ही नहीं, तो उसमें भी इन्फेस्टेशन पाई गई है, आक्रमण का इंसेक्ट का पाया जाता है इसमें।
1: एक पारदबटी आयुर्वेदिक दवाई आती
0: हाँ
1: है,
0: पारदबत्ती, वैसे ये इसमें गेहूं ना इसमें चावल में वगैरह या दाड़ों में वगैरह डाल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की हमारी कोई सिफारिश नहीं है
1: सिफारिश
0: वैसे कहते हैं आयुर्वेदिक है और उसके अंदर वैसे पारा होता है।
1: हाँ बस पारा होता है
0: और वो कहते हैं कि जो इंसेक्ट की डेवलपमेंट होती है तो उसको वो रोक देते हैं तो आगे अच्छा। यानी कि ग्रोथ नहीं हो पाती उसकी एक जो है आगे मतलब जैसे फर्स्ट इंस्टार लार्वी है सेकंड इंस्टार लार्वी है तो वो प्रोड नहीं बनेगा
1: जी जी जी
0: तो आगे उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है लेकिन हमारी कोई यूनिवर्सिटी की सिफारिश ये अभी
1: कोई बात नहीं लेकिन ये तो सिफारिश है ना कि हम अपना राजनाथ इतना संभालते रहें।
0: हाँ जी
1: है बीच बीच में जो है अगर कोई बात हो तो अपने एडीओ साहब आते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र संपर्क करके और अपना नाजन बचा कर रखें
0: हाँ तो
1: सुरक्षित रखें ताकि वो लंबे टाइम तक काम दे और ये देश का एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है
0: हाँ
1: हमारा कि नाज खराब होना मतलब ये नहीं कि हमारा खुद का खराब हो गया देश का अनाज है वो एक एक दाना जो बड़ा कीमती है किसान की बहुत मेहनत लगती है
0: हाँ
1: उसको बनाने में। तो चलिए बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब और आज आप इस विषय के ऊपर कुछ जानकारी दी डॉक्टर रामकरण गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार जी।
2: भाइयों ने सुनी आप बातचीत इसमें डॉक्टर साहब ने सारा हिसाब बता दिया कि भाई जो भंडारण करना है उसमें किस किस बात का ध्यान करना है और ये भी मनोरंजन हो जाए कुछ एक राग नहीं सुनांगे गायक कलाकार भीम सिंह।

0: या तो भैया ने रागनी सुन ली, गायक कलाकार थे भीम सिंह। और ईब कुछ पशुधन संबंधी बात करा तो पशुपालक भाइयों, गर्मी के मौसम में पशु का एक विशेष ध्यान करना वो है कि उसने ताज़ा पानी मिल जा, बांधन की जगह उसकी इसी हो जा कि थोड़ी हवा भी उसका लाग जा। और चारा हरा तो देखो जिन भाइयों द्वारा है अच्छी बात है, हरा चारा नहीं है तो कुछ उसकी चून है, कोई और दलिया है, कोई और ईसा लोभ सा उसकी दिया जा को वो न्यार ठीक ठाक खा ले। जब वो चारा ठीक ठाक खाओगा तो उसके जो बुढ़वार है वो बराबर चाले जाएगी, काम करने वाला काम भी ठीक करेगा, दुधारू पशु दूध ठीक दे होंगे। फिर बात आवे कि गर्मी के टाइम पर नुहाण की, नुहाण का देखो एक टाइम का तो हिसाब बने बने है, एक बार तो पशु जरूर नहाना चाहिए दोपहर के टाइम पर, और शाम के टाइम पर भी थोड़ा सा शरीर उसका ठंडा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होया करे। तालाब में घुमाण की कोशिश करनी चाहिए, इवन्यू कहते दे हैं कि तालाब में लेके जाओ, लेकिन तालाब के पानी ठीक नहीं है, उसमें कुछ खाज खुजली होने का, संक्रमण होने का, चमड़ी के रोग होने का डर बना रहे है। जिन भाइयों द्वारा साफ पानी है वो तालाब में लेके जा, जिनके द्वारा नहीं है तालाब बढ़िया, उसमें कोई गंदा पानी जा है गाँव का, तो फिर वो ना लेके जा, वो पाइप लगा कर कोई हैंडपम्प से, कोई टूटी है, कोई वह समरसीबल है, जो भी है उसमें तय अपना पशु ने नुहावें, थोड़ा सा ठंडा उसका शरीर हो जाए। लेकिन वो इतना ज़रूर करें कि नुहाने के बाद या नुहाने तक पहले थोड़ा सा मतलब घुमा कर जरूर ले खाओ। उसके घुमाने में क्या होगा कि उसका शरीर खुल जाएगा, जो खुर हैं वह ना बदेंगे, एक जगह पशु बंधा रहे तो पशु खुश भी नहीं रहता एक जगह बंधा उड़े। और बांधन की जीत उसकी जगह है, उस जगह पर जर रेत डल जा तो बहुत बढ़िया बात है। देखो कच्चे तो ही बहुत कम भाइया कहे हैं, थोड़े बहुत तो राह करे हैं, थोड़ा सा पक्का ठाण बना दे हैं, कुछ उसके साथ में कच्चा भी बना ले हैं, जो समझदार हैं भाई वो कर लें, लेकिन जिसके ज़्यादा पशु हैं उस जगह पर यू कम संभव हो पाओ ही बात है। ज़्यादा एक क्षेत्र है बांधन का तो उसमें तो कर भी ले हैं, थोड़ा कच्चा छोड़ दिया कुछ पक्का कर दिया, लेकिन जिनके एक एक पशु है वही भी करे हैं इसी बात नहीं है, तो फिर भी ये कहेंगे मान ले ठाण पक्का है तो अपना थोड़ा सा उसमें रेत गेर ले। रेत गेरेंगे तो वो ठीक ठाक पशु बैठ जाएगा, उसके घुटने नहीं छोड़ेंगे, थना संबंधी कोई दिक्कत से वह नहीं आओगी, कई सारे फायदे हैं। ये बने हैं कि पक्का ठाण बनवा दें, हाँ पशु का थन अपने घुटने के नीचे दब जा है या फिर दूसरे पशु के पैर भी आस के है तो उसमें दिक्कत आ जाया करें, तो यह कोशिश करें कि भाई जो बांधन की जगह है वो कच्ची हो जाए, और उसमें कच्ची में हम नुहाने की कोशिश ना करानी तो उसमें कीचड़ बन जाएगा, नुहावा तो उसने पक्का जो फर्श है उस पर खड़े करके ठीक ठाक पशु ने पानी मिल जाए, सूखा चारा भी मिल जाए, हरा चारा उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है ना, तो दूसरे उसकी जो पूर्ति है वह पशु की जरूर हो जानी चाहिए। और खनिज लवण मिश्रण की बात करें हैं, डॉक्टर जब भी आओ अपने दो रेख के बात कहे हैं कि भाई पशु ने वो चाहिए संतुलित आहार चाहिए, पूरा जितना चारा दाना पशु ने मिलना चाहिए वो हम अपना खुद भी करा अपना कहाँ बड़े बनाए बाजार में आओ है वो ले आओ और पशु ने दें। न्यू नहीं मानक वह यू पशु चल के दूध देव है इसकी जरूरत से ना, बात दुधारू की नहीं है, पशु है उसका स्वास्थ्य भी हमने ठीक रखना है, वो सारा कुछ खाओ पियोगा तो ही उसका स्वास्थ्य ठीक रह पाओगा। और बार घुमाण की गणीसी तो इब जगह नहीं रह रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जगह पर ले लिया घुमा फिरा लिया है, उसमें पशु का शरीर खुल जाएगा, थोड़ा बहुत जो खुरबदे हैं वह बच जाएंगे और पशु खुश भी रहेगा। फिर बात आ है कि भाई कुछ एक दो बीमारियों की बात है, इब अग चमासा का जब टाइम आओगा तो मुँह खुर की बीमारी आ जाया करे, उसकी खातर पहले टीके लागे हैं वो टीके जरूर लगवा लें। एक भ्रांति भाइयाँ करे है कि टीके लगवा लें कदे फिर पशु दूध तक घट जा, तो डॉक्टर का कहना है अक कुछ नहीं गणा है, दूध दाद घट दी मान ले एक गिलास दो गिलास घट भी गई तो वो अग जाकर जो समस्या होगी उस तो उसका बचाव रह जाएगा। तो ये कुछ बात थी, इनका ध्यान करें भाई, अपने पशुपालक भाई हैं वो भी ध्यान करें। और कल का कृषि जगत कार्यक्रम में भाई इस मौके पर एक काम और हो जाया करे जो भाई करना चाहो, चूहे मार अभियान का, तो वो के कुछ अभियान है उसके बारे में बातचीत सुनवाई जाओगी, तो कल वो बातचीत सुन लें। और कृषि जगत कार्यक्रम का आज का जो टाइम है वो तो इतना ही, अगला कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, ई बाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और ग्रामीण संसार में आज भाइयों ने एक विशेष कार्यक्रम सुनवाओगे। श्रोताओं, हमें जो कार्यक्रम प्रस्तुत करा हाँ और आप सुनो हो, मारा एक अजीब अनूठा एक संबंध है। हमने उसके एक दूसरे की शक्ल आज तक ना देखी हो, हम आवाज ते एक दूसरे ने पहचान भी ले हैं और एक दूसरे का हालचाल सारा कुछ हम ध्यान में कर भी लिया हाँ। लेकिन कुछ हमारे श्रोता ऐसे हैं जिनसे नज़दीकी हमारी बढ़ जाए हैं और किसी विशेष मौके पर उनके पास आना जाना भी हमारा हो जाए है। बाकी तो आप सब आकाशवाणी परिवार में हैं, आपके सुख दुख में शामिल होना, आपका हमारे साथ होना, हमारा आपके साथ होना, यो चल्या रहे है। चाहे कोई चिट्ठियां के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे किसी कार्यक्रम के माध्यम से आपका जुड़ाव बने है, हमने बड़ा बढ़िया लगा है। तो यह एक अभियान इसने कैस कहाँ, एक श्रृंखला हम इसने कैस कहाँ, यह हमारी कदे तो चाली आ रही है, यह एक परंपरा हम मान सका हाँ कि हम अपने श्रोताओं ते जिस तुम्हारा मन करे है मिलन ते, या फिर कोई श्रोता भाई बहन इस तरह की इच्छा जाहिर करे है तो हम उससे मिलन खातर चले जाया करा उसका द्वार पे भी। और जय हमने लग गए कि वो भाई हमने अड़ बुलाना है, उससे बातचीत करनी है, तो हम उससे अनुरोध करके बुला भी लिया करा। बहुत सारे पहले सथल रिकॉर्डिंग पहले भी बहुत सारी हुई हैं, ई भी विचार रही हैं, और जो कुछ श्रोता भाई बहन जो रह रहे हैं उसके है उनके पास भी हमारा कदे न कदे आना जाना हो सके है। कई दिन पहले चांदीराम कौशिक जी तो मिले थे जो कैथल में जिनका निवास है, रेडियो के गायक रहे, बहुत बढ़िया लगे उनके परिवार से मिलकर, सारा हालचाल उनसे पूछा, वो भी खुश हुए और हमने भी बड़ी खुशी मिली। फिर एक चक्कर लग गया लेना सिंह अत्री जी गाँव फफड़ाना से हैं, बहुत मान्य और कवि हैं जिन्हें सांग भी लिखे हैं, रागिनी भी उनकी लिखी ओढ़ हैं, बहुत सारी उनकी रचना है, कविताई बहुत बढ़िया उनकी। तो मन था उनके पास जान का कि उनते मिल कावा, लेकिन न्यू का आकर के मिला जब बजाव है, जब वो मौका आवा है, तो हम उनके पास एक दिन मौका लाकर चले गए थे और उनते बातचीत हुई मारी, हमने बहुत बढ़िया लग्या, बड़ा आनंद का अनुभव हमने कराया उनके पास बैठ के बातचीत करके। तो पहले तो वो सुन लिया हाँ भाई हमने के उनसे बातचीत करी है, के लेना सिंह जी ने सुनाया है। श्रोताओं का आग्रह टाइम बलवान हो है, आज एक ऐसा मौका, एक खुशी का मौका हम इसने कहा हाँ, एक ऐसे शख्सियत एक न्यू का आग्रह के भाई शेर आगे शेर से मिलने का मौका मिला। घने दिन हो गए मुलाकात करने का मन कर रहा था लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा 10 कदम ठाक जाना पड़े था हमने। गाँव फफड़ाना ते लेना सिंह अत्री जी कवि हैं, बहुत बढ़िया उनकी कविताई अपने रेडियो में भी बहुत चल रहे हैं, उन्हें कई सांग भी लिखे हैं, बहुत सारा उनका योगदान कह तो घना कुछ उनसे सीखना हमने मिला। इब हाल में असंध में रहे हैं, कई दिन पहले बात हुई कि भाई मिलना चाहूँ हाँ, तो आज आकाशवाणी की पूरी टीम में जिसमें अनिल भाई, बलजीत भाई और मैं दलजीत भाई और मारे जो न्यू कह सरदार मारे बड़े भाई संपूर्ण जी, हम सारे मिलन खातर पहुंचे, सारा परिवार बड़ा खुश होया, हमने भी बहुत ज्यादा खुशी मिली। और न्यू पता लग गया कि भाई ये तीनों चारों भाई आन लाग रहे हैं आकाशवाणी में, तो नजदीक के कुछ हमारे श्रोता थे उनने बनक लगी तो वो भी हमारे पास पहुंच के बड़ा अच्छा एक वातावरण, और लेना सिंह अत्री जी से मिलकर मन खुश हो गया। इब उन तो जानेंगे कि उनका जीवन किस तरह पहले का था और इब हाल में किस तरह का जीवन यापन उनका चल रहा है, की कुछ उनका बताया उड़ है, तो करें मुलाकातें। लेना सिंह अत्री जी नमस्कार, सबसे पहले तो
1: नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
0: उम्र कितनी को होगी?
1: उम्र दलजीत भाई होगी 75 साल की।
0: 75 साल है, जो टाइम मार दिया
1: दोटा पूरा।
0: अच्छा, आपने कविता भी लिखी, सांग भी लिखे, ये बहुत सारी रचना आपकी रही हैं, लेकिन अपना जो और काम काज था कि तो कोई नौकरी थी, खेती बाड़ी थी, क्या करया करते?
1: नौकरी करी एमडी रसी रोहतक में,
0: महर्षि ध्यान विश्वविद्यालय रोहतक में। कौन से विभाग में थे?
1: उसमें रिजल्ट ब्रांच में।
0: रिजल्ट ब्रांच में, तो फिर रिटायर होने के बाद यू काम कराया कि नौकरी चलते चलते शुरू कर दिया था?
1: ना यू तो बहुत पहले कॉलेज के टाइम में शुरू कर दिया था, लेकिन पर लगा दो।
0: अच्छा, फिर यू शौक बने क्यों कर, कितना लग गया लगन है?
1: या लगन नहीं, इस तरह लगी दलजीत, वो सांग देखने का शौक था बचपन से।
0: हाँ,
1: बस शुक्र इस बात का मेरे बाप ने कदम रोकिया नहीं।
0: अच्छा,
1: सांग देखने का आकर दे तो न्यू सोचा कर दे, इनमें कितना दिमाग है, तू ये राग नहीं बनावा, मर में इतना दिमाग क्यों नहीं?
0: अच्छा,
1: और भाई सारी रिश्तेदारी में कोई इस चीज का कलाकार नहीं सिवा एक बम्बे वह मारे बाप के मामे थे उड़े मारे बाप के मामा बेटा लक्ष्मी चंद में बड़ा संगीता उसके सिवा और कोई रिश्तेदार नहीं।
2: अच्छा।
1: मेरी साथ पिंडी में किसी ने यू धंधा सीखा नहीं पाचा था नहीं आगे भी नहीं भी आगे।
2: अच्छा का बड़कम भी कोने आई है
1: ना बड़का में भी कोई शौक नहीं।
2: फिर ये उम्र बतेरी होली कदे न्यूटर लग गया कला गेला चली जाते सुना दो कुछ
1: सुना देंगे।
2: एक घने दिन पहले आप आए थे 2016 में याद है हमारे आकाशवाणी में संपूर्ण भाई जी ने आपसे बातचीत करी थी मैं सुनू था उसमें एक कुछ इस डाल की थी ताश तूस खेलने वाले पे कोई सी कोई कविता थी है कुछ ध्यान तो सुना दो ने
1: सुन लो चाल दिखा दू अज बनजारा 12 मास चौराहे पे।
2: अच्छा।
1: जंगा जंगा जाके देखो यो खेल ले ताश चौराहे पे गोलू बोलू सूडा भरतू मार के बोल खड़े हो जा दो दो बाजी लावांगे न्यू दे के झोल खड़े हो जा आठ बजन दे को जा तड़के टोल के टोल खड़े हो जा और घेर रास्ता तो गुडजन लेके मोल खड़े हो जा
2: लेके मोल खड़े हो जा
1: हां कोई रम्मी कोई तुरप बोल करते अभ्यास चौराहे पे और जंगा जंगा जाके देखो ये खेल लेता चौराहे पे ना नाना ना दौड़ा सिर के उल दे के इस खड़े देखे रात ने पीली बदबू मारे भूंडे बेस खड़े देखे जो क्या मरगे मेले लते उठ जा केस खड़े देखे सांझ ने उठे जूत बजा कर करतब हमेश खड़े देखे ले तेरे की दह तेरे की पाजे पांच चौराहे पे जंगा जंगा जाके देखो ये खेल लेता चौराहे पे
2: खेल लेता चौराहे पे
1: कोये उरे की कोये परे की चुगली करता पावागा सौ का सुल्फा खूब बतेरा उड़े सी सुरता पावागा भुक्की का फाका मारा एक बीड़ी बरता पावागा आठ रंगा ते लत्ते जल रे पट्टिया कुर्ता पावागा और बिन करतब के करते देखे टाइम पास चौराहे पे जंगा जंगा जाके देखो ये खेल लेता चौराहे पे महंगा ठेका दसमण दाने फिर ये मैं थोड़ा सुझाव भी दू महंगा ठेका दसमण दाने क्योंकर सांता फिट जाएगा बिना कमाए खाए क्योंकर खड़ा पेट घंट जाएगा करे बिना बता लेना सिंगला क्योंकर पूरा पट जाएगा अर्जुन से रस्ते चल यात्रा घर में आदर घट जाएगा मात पिता की करी कमाई करता नाच चौराहे पे जंगा जंगा जाके देखो ये खेल लेता चौराहे पे
2: चौराहे पे ये किसी ने देख के बनाई थी कुआं मन में आएगी
1: देख के उड़े चौराया हमारे घर के बना उड़े
2: गांव में अच्छा
1: उड़े बस सारे दांत बाते
2: उन तो सुना दिया
1: उन तो मैं सुने नहीं क्यों
2: अच्छा
1: एक कली सुन के उठ के बाज लिए
2: चलो
1: उठ के बाज लिए
2: बहुत बढ़िया आपका स्वास्थ्य ठीक लग रहा है हाल में उम्र के हिसाब से भगवान करे आपका और भी स्वास्थ्य ठीक हो थोड़ी बहुत बता रहे हो खांसी खो रहा यो भी ठीक रहो उम्र तो लंबी देखो हमें काम ना कर सके भगवान ते और अपने साथी और आए हैं उन तभी मुलाकातें करवा दें आपकी।
1: हाँ बिल्कुल क्यों नहीं
2: अनिल भाई ते बलजीत भाई ते
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: अत्री जी नमस्कार।
1: नमस्कार भाई जी नमस्कार।
3: एक बात हम भी सुन लाग रहे थे कि शुरू से चस्का लाग गया आपने तो कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम पे।
1: उम्र तो 7-8 साल का था जब मैं सांग देखने लग गया।
3: अच्छा फिर आपके महसूस हुआ कि जुकरे आपके मन में आकर देख भाई मैं कितना दिमाग से क्यों करके याद कर ले हैं क्यों करके फिर आपके क्यों करके होने लगी।
1: बलजीत भाई बात भाई शायद कोई यकीन करे ना करे।
3: हाँ
1: दो सपने मन आए।
3: अच्छा।
1: एक सपने मन दादा लक्ष्मी चंद देखे अगर भाई फलानी जगह सांग होने लग रहा लक्ष्मी बामण का और मैं चाल देखांगे हम गए जय बिलगी।
3: अच्छा।
1: उसकी जुत्ती धोती कुर्ता उसके बाला का स्टाइल उसका रंग रूप जो कुछ था।
3: हाँ।
1: मैंने जाकर उस तभी इंट्रोडक्शन दी।
3: अच्छा।
1: उन्हें पूछा भाई यू लक्ष्मी कौन है बोले माजी लक्ष्मी मांगे बामण का चेला मांगे बामण तो आपका चेला है बोले हाँ मगर ये लक्ष्मी नाम इसका वीर मगर यू मैं इसका चेला बनाता हूँ फिर मैंने मगर लिखना तो कोई नहीं आता।
3: अच्छा।
1: तो उसने मेरे सिर पर दर्द दर्द मेरी आँख खुल गई।
3: अच्छा।
1: उसके बाद फिर मैंने सरों की पहली रागनी ली गांव में इलेक्शन हुआ था वो उसकी लिखी थी
3: कोई दो लाइन सुना
1: उसको उसकी कोई याद नहीं मेरे बाद कली 10-12 की कली थी बा।
3: अच्छा।
1: उसके बाद की फिर मैंने लिखना शुरू किया।
3: हाँ।
1: 10 साल तो मैं लिखता रहा और पढ़ता रहा
3: जी
1: मगर भाई उस स्टाइल पर तो नहीं पहुंचा फिर आप जैसे मैंने मिले ने मतलब लिखा रहा कुछ
3: हाँ
1: लिखता देख दिया दफ्तर में मैं कभी लिखू तो हूँ
3: हाँ
1: बोले फिर दिखा कोई लिख रहे हो तो
3: हाँ हाँ
1: मैंने देखी निमलर गजब कविता थ्री बोले इन्हें इकट्ठी करे मैं तुम्हें पाड़ के गिर दू बोले यार कमाल कर दिया जब मैं 10 साल की इकट्ठी करता तो मेरी किताब शायद बहुत ज्यादा भी देख दो 8-9 किताब हुई है मेरी
3: सही बात है
1: हाँ
3: तो कितनी रचनाएं कर चुके हो गए आप अब
1: फिर
3: तक?
1: मैंने 10 सांग लिखे
3: 10 सांग दो चार के नाम कोई
1: दो चार के नाम एक तो शिविर वाल लिखा सिवा अपने गुरु की परमिशन लेके
3: अच्छा
1: डॉक्टर बद्दू ने कहा ने बोला भाई पंडित जी ने सांग लिखा है ने बोला शिव जी की बरात का वर्णन नहीं है उसमें
3: अच्छा
1: ने बोला के मतलब होया शिव जी का बाद दोबारा क्यों होया मैं फिर गन्नौर गया मेरे गुरु जी दौरे यू एक सांग तो मैंने उनकी परमिशन लेके बना था पौराणिक
3: अच्छा
1: और एक सांग वो दुनिया ने बना रखी है वो भगवान जाने सच्ची कहानी है काल्पनिक है रामन दिमाल का तो मेरे गुरु जी ने यह बात कही थी ने बोला बेटे जो नाम कमाना चाहे तो अपनी न्यारी लीक पाड़
3: अच्छा
1: तो मैंने समाज में जो बुराई है नी जितना दहेज के है लक्ष्मी बहू लिखा सांग आकाशवाणी पे रिकॉर्ड होया धर्म सुता है पंच फैसला है जिसने लव मैरिज कर ले मरवा दिए बच्चे ने तो इसमें मैंने मतलब पीछे तक कुछ सुझाव दिया अपना
3: जी
1: एक इस पे लिखा धर्मसुता है मौसी आएगी उस बच्ची ने वो तंग करे वह करते बाहर निकली
3: बिल्कुल काफी मतलब रचनाएं करी आपने
1: बाप का काज जिंदे जी उन्हें ठोक दी मरिया पाते उसकी जग करें तो यो क्रिया एक मैंने एक राम रतन का ब्याह एक वो सांग लिखा था मैंने शुरू में चंद्रपाल प्रीत कौर का
3: जी
1: बचपन में उसकी शादी कर दी बच्चे फिर ना पसंद विचार मिले तो 7-8 सांग मैंने अपने इसे लिख रखे हैं आकाश है जब तक ये सांग परंपरा शुरू हुई है ये कहानी मेरी जो है ना मेरे पास है वो किसी के पास नहीं मिलेगी
3: जी बिल्कुल अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगे जब ये आप सांग रचना के कार्य में या रचना करने लग रहे थे घर वालों ने कितना के साथ दिया कितना सहयोग मिला आपको
1: घर का सहयोग तो बंदे की मिलना था तो मेरे दिमाग की वो थी
3: नहीं परिवार में पत्नी है या और है किसी ने नौका हो सारी बैठा रहे अपना किताब लें
1: ना मेरे तक किसी ने कोई इतराज नहीं करे
3: अच्छा पूरा मतलब सहयोग रहा
1: हाँ जो तो पूरा सहयोग रहा मैं तो दिन में लग रहा चला चला गया मेरे किसी ने टोकने की जरूरत नहीं
3: कोई ऐसी अनूठी कोई रचना मारती भी सुनना चाहूंगे श्रोता भी सुनना चाहूंगे
1: अनूठी चीज सुनना अनूठी चीज इसका टाइटल है
3: अच्छा सुना दो जी
1: एक हमारे गांव का लड़का था नहीं बोला ताऊ ईब के है नहीं मिला पहला पहला के था नहीं मिला ईब ठाट बाट हो रहे हैं अरे मैं कहा बेटे मैं चीज तो जो थी नहीं असली अनूठी चीज
3: हाँ।
1: मैं तुमने ना देखी ना खाई ना पहरी उन चीजा के ऊपर फिर मैंने बढ़ाई मैं तो मेरे दौरे कल ना आई तेरा फिर बताऊंगा मैं
3: जी
1: आज मैं चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: अच्छा
1: सेल सुहाड़ी और मुरमुरे कड़े गए मैं शक्कर पारे तिल के लाडू और चौड़ाई खान पान सब जाली सारे हर देखने में आते को न भरे रहते घी के बारे मिस्सी रोटी ऊपर नूनी खोपे बरगा सीत कड़े से तोल तोल घी दिया करते आज संधे की रीत कड़े से दो सर डोका गले ढोल में खान पीड़ की नीत कड़े से घी शक्कर का खाना कितवा गुड़ की गेल मलाई
3: जी
1: आज में चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: बिल्कुल सब कुछ बदल गया
1: सोंगर टींड पील और पिंजू भरबंटी और गहरे चौड़े नीम की नोड़ी पीली खो देती जो फुंसी फोड़े बेर बंबोले कोयल पद्दी भुजा परते गए ककौड़े मड़ कचर और कचरे कचरी मिट्टी मिट्टी फूट कड़े से होल बना के खाया करते हरा छोलिया बूट कड़े से फास्ट फूड तालिया जग में कुदरत का फ्रूट कड़े से
3: बिल्कुल
1: नाड़ी देख बताया करते हुए देसी बैद दवाई आज में चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: सही बात है
1: कोड्डी जूड़ा सी स्कूल ये पैरट की चीज आएगी
3: हाँ।
1: कोड्डी जूड़ा सी स्कूल में डांडी बाली सहार कड़े से कंठा कंठी मोन माला दो लड़िया का हार कड़े से नाथ बुजनी एक बिस्तर बिंदी देती अजब हार कड़े से सन कंगन और टाट पछेली हाथ पूर सिंगार कड़े से कड़े छड़े रब झोल पैर में जन जन की जनकार कड़े से दांती पाती न्योरी पायल एक दड़ी का बाहर खड़े थे
3: सही बात
1: भला एक दड़ी चंद की गल जिमीदार
3: बिल्कुल अब सारी जो है पुरानी रीति रिवाज सारी बदलती जा रही है
1: शाम से मुंह पे कोइयां ठोडी खिड़ने की चतराई
3: हाँ
1: पहले लगवाई खड़िया आरदी कोडी ठोडी ये कोइयां ठोडी
3: हाँ ठोडी खिड़वा लिया
1: हाँ ये बढ़िया कोई रिवाज नहीं है बावन गज का गूम गागरा लाल कंध का दामन किस है नाड़ा और तागड़ी से जरीले गरीब बगती लामन किस है गोटा पेमक लगी चुंदड़ी डाले कैसी कामन किस है मीडी इंडी सिर पर दो गड़कुए की पनियार कड़े से पांच सात दस बीस जनी मिल गीता की जिंगार कड़े से निज्जू डोल पर से आला कुआ छत्रीदार कड़े से एक जनी भरे नीर गढ़े में दस करती बीर खिंचाई
3: हाँ।
1: आज में चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: बिल्कुल
1: जुआ जोत सिलम ऊंटरा ये गाड़ी का
3: गाड़िया के आगे
1: जुआ जोत सिलम ऊंटरा मंडिया और पंजाला किस्से पहिए बांक तकेल धुरी फड़ ढांज सलीते आला किस्से धोती कुर्ता पगड़ी आला सात फुटा गढ़वाला किस्से पिंडे पाट गले कोल्लू में सारस कैसी जोड़ी किस्से चाक चबच्चा डोरे के रस की ओत गमोड़ी किस्से खुदा खांड और गुड़ की बेलिया चक्र की रोड़ी किस्से रस की मेली तारा करते वकड़ गई सकड़ाई आज में चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: जी
1: आज बलजीत किसी के न्यू पूछा नहीं तेरे दादा का नाम क्या था
3: हाँ
1: दादा दादा तक कम सी मेरे परदादा का नाम भी नहीं पाऊंगा
3: बिल्कुल यार पहले कई कई पीढ़ी याद रहा कर दी
1: हाँ मैं अपनी प्रणाली की सात पीढ़ी बताऊंगा
3: अच्छा
1: तुरंत बना के गाया करते नेत्राम से कवि कड़े से मवासी नाथ और मान सिंह जी उन जैसी छवि कड़े से जाटी आला दादा लक्ष्मी काव्य रूप कर रवि कड़े से दादा मांगे लेप शिकारी काट्या करता फंद कड़े से बम्बे वे में बास करिया सतगुरु लक्ष्मी चंद कड़े से और तम दलचल पास न्यू बोध धोगी लैनावती मंद कड़े से
3: बिल्कुल
1: असाज बाज और राग रागनी में खत्म हुई कविताई आज मैं चीज अनूठी देती नहीं दिखाई
3: बिल्कुल सारी की सारी इसे चीज हैं और आधुनिकता छा गई है सारे के तो लेना सिंह जी आपका स्वास्थ्य में सुधार हो इसी कामना के साथ है मैं तो लू इजाजत अरे अनिल भाई इनके बोरे आप
4: तो भाई दलजीत भाई ने पूरा भाई बता दिया और भाई अपना असंध में बैठे हैं और भाई बलजीत ने भी अपना पूरा परिचय लिया त्रि जी का और स्वास्थ्य भी अत्रि जी का प्रभु कृपा से ठीक ठाक सा है अत्रि जी नमस्कार जी
1: नमस्कार जी भैया
4: अत्रि जी बाकी तो सारी पूछ ली लेकिन जो आपने जितने भी किस्से बनाए सांग बनाए रचना बनाई फुटकड़ बनाई आपने कदे एक तो आपने लिखी है कवि हो कदे सांग भी करे है बेड़ा भी बंद है
1: ना ना ना ना बेड़े का मतलब
4: अच्छा बाकी तो देखो इतने सांग लिखने के बाद मैं तो मन में जाकर भी बेड़ा बनावा
1: ना बेड़ा नहीं बनाया बाकी तो सांग लिखा करता नहीं उस वक्त दिमाग में ही आया करते कि तो सांग कर लाग रहा उस वक्त पिक्चर वही दिमाग में रहा करती और बिल्कुल वो एहसास बारी इस पर यह रखनी बननी चाहिए यह रखनी बननी चाहिए वो उस टाइम दिमाग में रख दी बाकी ना मैंने सांग में कभी रहा ना मैंने कदे गाया
4: बिल्कुल
1: गाना तो आवे बिना जिन्हें गाना ही नहीं आंदा वो बना होगा के वो तो तर्ज के ऊपर फिट करना पड़ता है बाकी गाया मैंने कभी नहीं लिखे लिखे हैं ये
4: लिखे लिखे हैं
1: तो एक आपने रागनी सुनाता हूँ मैं
4: जी।
1: थोड़ा धार्मिक उसका भी होनी चाहिए अध्यात्म
4: बिल्कुल बिल्कुल
1: सृष्टि का यु सार है धर ध्यान सुनो नर नारी पहले तो आकाश बनया ना उसका ठोर ठिकाना पाया पायु का प्रकाश होया ये रूप रंग ना चौड़ी छाया सूर्य देव से रची पृथ्वी जिस पे यु सब खेल खिलाया अगन पवन जल धरण गगन यु पान तत्व का मेल मिलाया ब्यान समान उद्यान प्राण अपान हरि ने आ बसाया किसे की भी शक्ल मिला ना ऐसा गालब कित लाया तेरी माया अपरंपार है किसी रस्ती दुनियादारी सृष्टि का यु सार है धर ध्यान सुनो नर नारी रूप बनया नेत्र की खातर देख देख हो आनंद काया नाक की खातर गंध बना दी सूंघ सूंघ हो मन का चाया रस बनाया रसना ताई कदे तीखा कदे मीठा खाया काना खातर शब्द बनाए स्पर्श त्वचा का विषय बनाया जिब्बा होती बोलन खातर जिसने मीठा राग सुनाया हाथ पैर और लिंगा गूदर न्यारा न्यारा काम गिनाया प्रभु निराकार साकार है या मूर्त कड़े ते तारी सृष्टि का युसार है दर जान सुनो नर नारी नर और मादा रचे हरी ने मैथुन से औलाद करें से जीव के सारे जीव पढ़ाई मोह ममता के बीच की रह से पैदा सोए न पैर जगत में मृत्यु से क्यों जीव रह से अधर्म से मिले कूड नरक की शुभ कर्मों से मुक्ति मिल जा मन मारे और इंद्री जीते फिर हरि की भक्ति मिल जा काम क्रोध बदलोभ का त्यागन फिर जीव ने शक्ति मिल जा न ते नाव खड़ी मजदार है फिर कर डूबण की तैयारी सृष्टि का आयु सार है दर जान सुनो नर नारी लाख तलासी जिया जून प्रमाण सुनो तुम न्यारा न्यारा दस लाख पखेरु होते कृमी लाख बताए ग्यारह
2: बिल्कुल
1: सत्ताईस लाख सत्तावर होते नौ लाख दल बीच गुजारा चार लाख मनुष्य की योनि तेईस लाख कह चौपाए हे प्रभु त्रिलीला न्यारी कैसे कैसे के लरचाए घमंड त्याग कह लेना सिंह ने कवियों को सलासी झुकाए उनका ये बेड़ा पार है जिन्हें याद करे त्रिपुरारी सृष्टि का आयु सार है दर जान सुनो नर नारी
4: बिल्कुल जी अत्री जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अत्री जी आपने जिस तरह राजनार सिंह का भी लिखा है ना सांग अपना आकाशवाणी ते भी है और एक आपकी रचना है बड़ी बोला भाई बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोलने बोल बोला हीरा मुख से ना कर लाख हमारा मोल तो इससे दो अनुसार तक करते हुए आपके एक है बोला भाई तेरे आण के रूख रहे ना कद लेना सिंह तिरने कटे बड़ी भैया की फरमाइश है और देखो अपना बारे में कितना वो बता रखे है अगर ध्यान हो तो
1: अनिल एक ऐसा है पहले भी ऐसा था अंधविश्वास और आज भी है बहु आज नहीं साल बरस भी थोड़ा हो जाए फिर तो है ठीक
4: जी
1: और नहीं तो उसने बांध लाग जाए बताने घर के ही और पड़ोसियों तो फिर कहना ही था
4: बिल्कुल
1: तो वो बहु वो अंधे फिर वो मिन्नत मांगनी शुरू करे ये मेरी पाथरी वाली ये मेरी देवी ये मेरी पुकाली वो सब की मिन्नत सारे ने मनावा मैंने मेरा बेटा दे वो बेटा हो जाए फिर उसने वो उसकी वो भी करनी है और भाई आखिर में फिर उसने फिर बुढ़ा भी होना है
4: बिल्कुल
1: तो ये तो मतलब टेक मैं कर लिया मैंने सारा लेकिन इसकी बैकग्राउंड फिर चलती है पूत होने की खुशी मात्र है मड़ी मसाणी छड़ गेरी और बुढ़ा बारह कड़बा हो गया घर में कोई ना चलतेरी बेटा हो गया बेटा हो गया थाली फोड़ गरी घर की दूध दी दो के बुआ लेगी बढ़िया टू माधर की लागड़ झोटी तीस तील भूखी ना सूंद अंदर की लाखा में मेरा होया भतीजा मुश्किल फिर फिर हर की अरे वो भी दिन था ते होने की कुड़बे ने माला टेरी अज बुढ़ा बारह कड़बा हो गया घर में कोई ना था तेरी सात साल की हुई अवस्था हाथ थोड़ी पकड़ाई दिन देखा ना रात ने कदे सुख से रोटी ना खाई सारी उम्र कमाई करके जोड़ दरी पाई पाई और काले आड़ कमा गया कर लिए कुर्सी दायत्री गाई झूठ कपट कदे सुबई ना कदे सीखी ना हेरा फेरी अज बुढ़ा बारह कड़बा हो गया घर में कोई ना चाह तेरी सारी उम्र कमाई करके आखिर हार फिर गया बाजी गई जवानी आया बुढ़ापा बेटे पोत्या का पाजी छोड़ अकेला गई राम गया दे अंकी थी साजी और दुन से दांत गिना करते घर में देख नहीं रहा जी फिर न्यूका है उसने तने कौन से सलाए थे न्यूका कौन से सलाए थे तने फूक गात कर दी डेरी बुढ़े बारह कड़वा हो गया घर में कोई ना चाह तेरी चौथी कली दी की कर्म के भोग भोगने से कर्म के भोग भोगने से ना बे माता का लेख मिटे सुई सूख गात का जोड़ा हो गया मास्ता मास्ता रोज घटे ये भोखरड़ बोल सेल सी लागे दिल दरिया किस डाल डटे निगवाई के आण के रोक रहे कोई नगद लेना सिंह कीड़ा कटे कोई नहीं किसी का दग में झूठी से मेरा मेरी आज बुढ़ा बारह कड़वा हो गया
4: घर में कोने चाह तेरी हर जिब्बे नुका घर में बुढ़ापा कड़वा फल है ना तो त्रिजी बहुत बढ़िया रचनाएं आपकी है और खूब भाइयों की फरमाइश थी कि भाई लेना सिंह जी की कविता पाठ और कुछ रचनाएं सुनाओ लेकिन आपका स्वास्थ्य कारण के चलते आज फिर मन बनाया कि भाई सारे अपने संपूर्ण जी ने बीड़ा उठाया कि भाई चलो सारे चल लेंगे और फिर अपने बलजीत भाई दलजीत भाई रोहतक तो सारे इकट्ठे होके और फिर आपके निवास स्थान पाए और बहुत
1: एक और सुनाऊंगा अपने पैसे की महिमा।
4: अच्छा चलो चलते चलते एक रचना और अत्री जी की
1: सारा देश पीछे के पथ से भाग रहा है किसी न किसी की कोई चादा नहीं, रिश्तेदारी नाते सब खत्म हो गए, पैसे पैसा हो, पैसा दुनिया का सिर मोड़ है, पैसे बिन घोर अंधेरा, पैसे के लापा उठे से पैसे बिन अंधा हो सह, मौत बहाने हिले रोजी करण खान का रंधा हो सह, और टोटा खोटा भीड़ कपत्ती रहन बसेरा गंदा हो सह, बनी बनी के सौ सौ साले बिगड़ी में सुनाई को न्या, भाईचारा मित्र प्यारा के सब ने आग सुनाई को न्या, और ब्याई बीर छोड़ जा बरन मर्ज की मिले दवाई को न्या।
3: बिल्कुल,
1: धन की खास मरोड़ है अनके सिर हो से सेरा, दुनिया का सिर मोड़ है पैसे बिन गोर अंधेरा, पैसा सब कुछ को जा से पर खुदा तक घाट बताया को न्या, अन पानी बिन सरता को न्या, पैसा जाता खाया को न्या, ईसा आदमी कौन जगत में चाहती जिसने माया को न्या, पैसा दिली नहीं पास में मानस में तै बांस आवे, बेशक छड़ो अकेला घर में कोई भी ना पास आवे, और कैसी चीज बनाई रब ने नहीं सुखाड़ा सांस आवे,
3: बिल्कुल
1: यो खास बात का तोड़ है संसार नरक का जेरा, दुनिया का सिर बोड़ है पैसे बिन गोर अंधेरा, पैसे कारण आपस के में लड़ते भाई भाई देखे, लोभ कीच में फंस के लोगो मांगे हक जमाई देखे, लोभ पाप का बाप बताया करते लोग साई देखे, सुत्ते की जागीटी घोटे बनके चोर चढ़ाई करते, बेटा बेटी पैसे कारण बाप की रोज पिटाई करते, और गांठ गांठ में छोड़ भर जैसे पाप की पढ़ाई करते, यू असली सो का जोड़ है सिर कलु काल का घेरा, पैसा दुनिया का सिर मोड़ है पैसे बिन गोर अंधेरा, त्यागी और बरियागी योगी लालच में दरवेश देखे, झोली ठाए फिरे बतेरा भगवा करके भेज देखे, और करके खाना कठिन बताया जी ने हुए कलेश देखे,
3: बिल्कुल
1: मर्द बतेरे देखे हमने पैसे कारण बने लुगाई, ये सांग में
3: हाँ बिल्कुल
1: मर्द बतेरे देखे हमने पैसे कारण बने लुगाई, लाली पाउडर टिक्की बिंदी आंखियां के मैं गाली जाई, और पैसे कारण रो तके मैं लड़ना सी तेने उम्र बिताई, मन मंदिर की ठोड़ है गुरु लक्ष्मी चंद का डेरा, दुनिया का सिर मोड़ है पैसे बिन गोर अंधेरा।
4: बिल्कुल अत्री जी, आपकी जितनी भी रचना है और जितने भी कविता पाठ हैं सब से एक अनोखे कैस के हम भाई सांगी बजनी जितने भी, लेकिन आपकी जो रचना है सबसे दुर्लभ रचनाएं हैं, और अत्री जी आपने इतना समय दिया, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा ख़राब होते हुए भी, और साथ में संपूर्ण जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सारा बीड़ा उठाया लेके आए भाई नरेश लोहान जी वाले वहाँ पहुँचे, और बड़ा अपना बलजीत भाई दलजीत और सब का साथ, तो लैणा सिंह अत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभकामनाएं आपको, आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहे, और इसी तरह जो आपकी ये अनूठी रचना है आप प्रस्तुत करते रहो।
1: ठीक है, शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस सेहत का नहीं थी थोड़ा ढीला मामला चल गया, और नहीं तो लोर उठे तो रो तक आकाश बनी गई।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी मंगल कामना करांगे जल्दी आप दर्शन से उठा के भी, धन्यवाद।
3: बहुत बढ़िया,
0: तो या तो लैणा सिंह अत्री जी तो बातचीत सुन ली भाई, सारे ने बारी बारी से बात करी है, और श्रोताओं एक चीज आपने ध्यान में करी होगी, कुछ बीच बीच में आवाज सी आने लग रही थी, कट कट की आवाज आओ थी, ईसा लग गया कोई उनके घर के दौरे किसी मिस्त्री की दुकान हो, तो आपने बता दू कि मिस्त्री की दुकान नहीं थी, ये उनके परिवार का एक जो घर के अंदर तो जो आवाज आओ थी वो थी, और वो हमने फिर बाद में पता चला जो उनकी धर्मपत्नी मारी माता जी हमके इस कहा वो मारी खातर कुछ खान का बनान लग रही थी, उन्हें पता लग गया, और जैसे ही पता लग गया कि आकाशवाणी में थे भाई संपूर्ण भाई अनिल भाई बलजीत भाई दलजीत भाई आन लग रहे हैं, तो लैणा सिंह जी ने कहा अपनी धर्मपत्नी थी कि जा एक बार गाड़ के बाहर खड़ी हो जाकर उन्हें रास्ता बता कर दे वो ना ढूंढ पाए, और रास्ता उनके घर का थोड़ा सा कुछ अजीब सा भी था, अटपटा था, हमने मिला भी बहुत बारी, तो हम इधर उधर रह गए बिछड़ गए थोड़ा सा, लेकिन वो

ठीक रहा। और कहने की बात यह है कि सारा जितना समय हमने उनके पास लगा बड़ा आनंद में रहा। और आसपास के कुछ भाई, अड़ेवा गांव है नज़दीक लग गए है, वहाँ थे दीपक भाई, नरेश भाई, और भी उनके जो दो चार साथी थे जिन्हें न्यू लग गया कि भाई हमने मिलकाना है आकाशवाणी के जो प्रस्तुतकर्ता हूं थे, तो वो आए, बहुत बढ़िया रहा। और आने वाले टाइम में और जो भाई हमारे उनते भी मिलने का विचार है, जैसे ही टाइम लगेगा, जैसे भगवान का आदेश होगा, तो हम उनते भी जरूर मिलेंगे। तो ये एक सथल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम भी सुन लिया, और लैणा सिंह जी को शुभकामना पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और कदे भी उनका मौका लागे तो उनका स्वागत है, आकाशवाणी में आवें और मारते बातचीत कर सके हैं। और ईब मैं दलजीत भाई भी इजाजत चाहूँगा अपने श्रोताओं से कि इतना का टाइम मिला था इस कार्यक्रम में, घड़ी का इशारा हो रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, ईब इजाजत दे दो सारे बण भाइयों ने। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाने जा रहे हैं राजा फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

और प्यार हो गया। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से उदित नारायण को। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म कर्मा से अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म राम लखन से अनुराधा पौडवाल, मनोहर उदास और साथियों की आवाजों को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सत्यम शिवम सुंदरम। श्रोताओं, लीजिए सुनिए इस फिल्म से मुकेश और साथियों की आवाजों को। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म तेरी मेहरबानियां से अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों को। एसएच बिहारी के लिखे इस गीत को स्वरबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बहार आने तक। श्रोताओं लीजिए सुनिए इस फिल्म से पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों को। गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए फिल्म 20 साल बाद से अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों को। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं असलम साबरी सहारनपुरी कव्वाल की गाई कव्वालियाँ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असलम साबरी सहारनपुरी कव्वाल की गायी कव्वालियाँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे असलम साबरी सहारनपुरी कव्वाल की गायिका वालियाँ। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेज़ी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

0: पुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
2: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
3: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म जाबाज के गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किस्सा नल दे मिनती का।

तक फिरे कवारी से तेरे पासे नरनुंदिये ब्यासी तेरे पासे नरनुंदिये ब्यासी स्वंबर की

के लते में के चोटी चमक नाग फिर जुनु घास में नहीं किसी को दिख्या न लगया दमयंती के पास में 101 बन

चंद्रमा शर्माजा थी दमयंती ऐसी सुंदर अग्नियम वरण और इंद्र आरे तेरी तलाश में नहीं किसी को दिख्या न लगया दमयंती के पास में 101 बंदी जिसकी टहल करे।

संगी जाइए लाइए प्रीत मतना ब्यास में नहीं किसी को दिख्या न लगया।

मेरा पति सुनिया मने और पति ना चाहिए, अरे छोड़ देवता।

आखे पतिव्रता का पति एक नलभूप मेरे मन भाया जिसा संदेशा।

होते इंसान अकल में दिखे विश्वकर्मा बृहस्पति कैसा विद्या बुद्धि बल में मने बता दे दमयंती तू के रही सोचे अकल में के रही सोचे अकल में मैनू सोचू सू नल रजा मन कदले जा ब्याह करके आ गया तै मने।

यावड़ गीते स्वंबर के में मर जाएंगी विष खा के देवता धाम स्वर्ग का सुख दे देख जरा।

मने आपका इब के करूं यतन में के जतने बताऊं करे जो कुछ

बात बूझना चाहू सू नर नंद ये राम किसन में गुरु मैरम जी।

के नाम आपका ना भेद आपका पाया, अरे वीर सेन का नल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे किस्सा नल दमयंती का। गायक कलाकार थे जगबीर सिंह सांगी। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के प्रसारण। रात के 10 बजने को हैं अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दीकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over tantakari and layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival, Delhi, Pandit Ram Marathe Festival, Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav, Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav, Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar, Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, वृंदावन गुरुकुल स्कॉलरशिप। टुनाइट श्री विवेक सोनार प्रेजेंट्स राग चंद्र कंस आलाप जोड़ एंड मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही विल बी अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री ओजस अधियार।

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honour that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability, and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future-ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening, and the growing contribution of clean energy in powering countries' growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization of government vehicle usage in its offices and units and measures for reduction of fuel consumption. The memorandum has been issued by the Office of Police Commissioner in view of the prevailing international situation and Prime Minister Narendra Modi's appeal for austerity measures and reduction in fuel consumption. In IPL cricket, Rajasthan Royals have set a target of 194 runs for Delhi Capitals in Delhi. Chasing the target, Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी व अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।